0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत भारती में गायन। कलाकार थे पंडित राजन साजन मिश्र। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित नयन घोष का सितार वादन, और उसके बाद अपने गायन की प्रस्तुति देंगे वासु गंधर्व। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन पंडित नयन घोष का।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सितार वादन पंडित नयन घोष का, और ये है गायन वासु गंधर्व का।

0: अभी आप सुन रहे थे गायन वासु गंधर्व का। आज का कार्यक्रम भारत भारती बस यहीं तक। अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त दानिश को। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती, जिसमें आपको सुनवा रहे हैं गजल गायक अहमद रजा को, जो पेश कर रहे हैं कलाम मशहूर शायर कैफी आजमी का।

बहुत ही खूबसूरत गज़ल, बड़ी मकबूल, शायद ये आपको अब पता चले या पहले से पता हो कि ये भी कैफ़ी आज़मी साहब की गज़ल है। इसके शुरू होते ही शायद आपकी तालियों की आवाज़ मुझ तक पहुँचेगी, मुझे यकीन है। शुक्रिया।

गज़ल का बहुत ही खूबसूरत शेर। इस गज़ल को पूरी दुनिया में बड़ी शोहरत मिली और जगजीत सिंह साहब जो मखमली आवाज़ के मालिक थे उन्होंने पेश की है। पेश कर रहा हूँ।

0: बहुत शुक्रिया।
1: एक और बड़ी मकबूल कैफी आज़मी साहब की गज़ल पेश कर रहा हूँ कि मैं उर्दू का मुसाफिर हूँ, यही पहचान है मेरी, जिधर से भी गुजरता हूँ सलीका छोड़ जाता हूँ। पेश करता हूँ आपके सामने। हमारे म्यूजिशियन के लिए

जैसा मौसम हो वैसा वैसी चीज गाना अप्पा जी की खासियत थी। होली का समय है, होली में आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी, सांवरे रंग लाल करी डरी हूँ, मले गुलाल दो गालन पे रंग डारूंगी। नारी बनाई नचाई छोड़ी हूँ, डफ मृदंग के तालन पे रंग डारूंगी। अब एक एक कृष्ण है और कई सखियां हैं, राधा है, हर सखी अपने अपने नेचर के स्वभाव के हिसाब से उन पे रंग डाल रही है। जो बहुत शर्माने वाली है वो धीरे से जाके रंग उनके आगे फेंक देती है, जो बहुत लड़ाका तबीयत की है जाके खूब झगड़ के उनको रंग लगा रही है, और जो बहुत चंचल है वो नाचते कूदते जाती है और रंग लगाती है। इन्हीं चित्रणों को चित्रित किया जाता है जब ठुमरी या इससे जुड़ी हुई विधाएं होली वगैरह गाई बजाई जाती है। इसमें शब्दों को कहा जाता है, रंग डारूंगी तो आज तो रंग डार के छोड़ूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी, ये होली मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ।

0: श्रोताओं, उस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम तराने आज़ादी यहीं पर संपन्न होता है और साथ ही संपन्न होती है हमारी दोपहरकालीन सभा भी।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, शाम के ठीक 5 बजे हैं, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 173 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रावरुणी, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप, विराट स्थाना अथवा विषम पदा।
1: गायत साम नभन्यम यथा वेरर्चाम तद्वा वृधानम स्वर्वत गावो धेनवो बहिर्हिष्यदब्धा आ यत सद्मानं दिव्यं विवासान। कामनाओं की पूर्ति करने वाली वाणी यज्ञ में विराजमान इंद्रदेव की सेवा करती है। आप अपने ज्ञान के अनुसार शत्रु हिंसक साम का गायन करें। हम भी इसी प्रकार इंद्रदेव के लिए सुखदाई तथा उन्नतिकारी साम का गान करते हैं। अर्चद वृषा वृषभिः स्वे दुहव्यैर् मृगो नाशनो अति यज्जुगुर्यात् प्र मंदयुर्मनाम गूर्त होता भरते मर्यो मिथुना यजत्रह। जिस समय हवि सेवन के इच्छुक इंद्रदेव सिंह के समान अपने भक्ष्य आहुतियों की कामना करते हैं, उसी समय तेजस्वी ऋत्विज सामर्थ्यवर्धक अपना हविष्यान्न इंद्रदेव को समर्पित करते हैं। हे पुरुषार्थी इंद्रदेव, हविदाता, यज्ञकर्ता तथा होता, स्तोताओं के साथ मिलकर मंत्रोच्चार पूर्वक आपके निमित्त हव्य प्रदान करते हैं। नक्षद्धोता परिसद्म मिता यन भरद्गर भमा शरदः पृथिव्याः क्रंददश्वो नयमानो रुवद गौरंतर दूतो न रोदसी चरद्वाक। होता इंद्रदेव गतिशील होकर सर्वत्र संव्याप्त होते हैं और शरद ऋतु से पूर्व वर्षा ऋतु में पृथ्वी के भीतरी भाग को जल से भर देते हैं। इंद्रदेव को आते देखकर अश्व शब्द करते हैं, गौएं भी रंभाती हैं। द्युलोक तथा भूलोक के बीच इंद्रदेव दूत के समान घूमते हैं। ता कर्मा शतरास्मै प्रच्योत्नानि देवयन्तो भरन्ते जुजोषदिन्द्रो दस्मवर्चा नासत्येव सुगम्यो रथेष्ठाः। देवों के उपासक ऋत्विजों द्वारा जो शत्रु संहारक हवि इंद्रदेव के लिए अर्पित की जाती है, वही भली प्रकार से तैयार की गई हवि हम आपके निमित्त अर्पित करते हैं। दर्शनीय तेजस्विता युक्त और श्रेष्ठ गतिशील रथ पर आरूढ़ वे इंद्रदेव अश्विनी कुमारों के समान हमारे द्वारा प्रदत्त आहुतियों को स्वीकार करें। तमुष्ट हींद्रम यो ह सत्वा यह शूरो मघवा यो रथेष्ठाः प्रतीचश्चिद्योधीयान् वृषण्वान् ववृषश्चि तमसो विहंता। हे मनुष्यो, जो इंद्रदेव शत्रु संहारक शूरवीर ऐश्वर्य संपन्न उत्तम सारथी असंख्य विरोधियों से निर्भीकता पूर्वक युद्ध करने वाले, प्रचुर सामर्थ्य युक्त और छाए हुए अज्ञान रूपी अंधकार के नाशक हैं, ऐसे गुणों से संपन्न इंद्रदेव की ही आप अर्चना करें। प्रयदित्था महिना नृभ्यो अस्त्यरम रोदसी कक्ष्ये नास्मै सम विव्व इंद्रो व्रजनम न भूमा भर्ति स्वधावाम ओपशमिव द्याम। इंद्रदेव अपनी महिमा से मनुष्यों के प्रभु हैं, उनके लिए कक्ष के ही समान आकाश और पृथ्वी दोनों लोक पर्याप्त नहीं। वे इंद्रदेव बालों के समान पृथ्वी को तथा बैल के सींग के समान द्युलोक को धारण किए हुए हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 173 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

हर समय हमें प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए। चलते समय ईश्वर का नाम जपने वाला प्रत्येक कदम पर यज्ञ का पुण्य पाता है और उसका शरीर तीर्थ स्थल बन जाता है। वहीं काम करते समय ईश्वर का नाम जपने वाला सदा पूर्ण शांति प्राप्त करता है।

यदि हम भोजन करते हैं और तब ईश्वर का नाम लेते हैं तो भोजन हमारा व्रत का पुण्य पाता है। यदि कोई समुद्रों से घिरी हुई पूरी पृथ्वी का दान भी कर दे तो भी ईश्वर का नाम जपने के पुण्य के समर्थ नहीं होगा। आइए हम भी सांध्यकालीन बेला में प्रभु का स्मरण करें।

यदि हम भजन सुनते हैं तभी हम भगवान की लीलाओं से कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध पुरुषों से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मान क्या है, अपमान क्या है, डर क्या है, क्रोध क्या है, ये सब क्या है? क्या ये सब मन का भ्रम है, माया चाल है? हमें हमारे मुख्य लक्ष्य से भटकाने के लिए, जिससे हम जिस उद्देश्य से मानव जन्म को प्राप्त किए हैं उससे हम भटक जाएं, इसीलिए स्वयं को अनुभव करके देखिए। कोई हमें गालियां दे तो उसे चुपचाप सुन ले, कोई प्रतिक्रिया ना दें

कोई हमारा सम्मान करे तो भी प्रसन्नता अनुभव ना करें, संभाव से रहें। यही भक्ति रस सुनने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है।

सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात अंतःकरण को अपने वश में करके सब कर्मों को मन से त्याग कर न उन्हें करता हुआ और न ही करवाते हुए नौ द्वारों वाले शरीर रूपी घर में योगी सुखपूर्वक रहे। आत्मा मनुष्य के ना तो कर्तापन की न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करती है, किंतु इसमें स्वभाव ही कारण है।

जिनका मन तत् ब्रह्म या आत्म रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तत् यानी ब्रह्म रूप हो रही है और जो निरंतर ब्रह्म में ही निष्ठा वाले हैं, ऐसे ज्ञान द्वारा निष्पाप हुए पुरुष अपुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में समान रूप से ब्रह्म को देखते हैं।

जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा यहाँ संसार में ही लय को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान निर्दोष और सम है, इसलिए वे परब्रह्म में ही स्थित हैं।

शांत, सनातन, अप्रमेय अर्थात प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ और राजाओं में शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ।

गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलि कराल कलिमल दहन नाम प्रताप प्रचंड, अर्थात कलियुग के पाप सिर्फ प्रभु के नाम से ही जल सकते हैं। नाम जप बड़ा ऊर्जावान है। आइए हम भी प्रभु का नाम स्मरण करें।

0: और श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत यहीं पर समाप्त होता है। आप बने रहिए रेडियो आसाद हिंद के साथ। शाम के 6 बजने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम वतन का राग आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रमों को प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। शाम के 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है गणेश वासुदेव जोशी की पुण्यतिथि पर।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भारत के इतिहास का एक ऐसा समय है जब औपनिवेशिक सत्ता अपनी जड़ें गहरी कर रही थी और अंधकार बढ़ रहा था, क्योंकि अंग्रेजी शासन की जकड़न बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे समय में ही जाग रही थी स्वदेशी और स्वाधीनता की पहली चेतना। इस चेतना के अग्रदूत थे गणेश वासुदेव जोशी, जिन्हें स्नेहपूर्वक सार्वजनिक काका कहा गया। एक प्रखर वकील, दूरदर्शी, समाज सुधारक और स्वदेशी के प्रबल समर्थक के रूप में उन्होंने न केवल महाराष्ट्र बल्कि संपूर्ण भारत के राजनीतिक पटल पर ऐसी लकीर खींची जिसने भविष्य में स्वाधीनता संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। स्वदेशी का विचार सबसे पहले उन्होंने ही प्रस्तुत किया था। गणेश वासुदेव जोशी ने सन 1872 में पहली बार स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। उनके स्वदेशी आंदोलन से ही गांधी जी को खादी के प्रचार प्रसार की प्रेरणा मिली थी। गणेश वासुदेव जोशी का जन्म 9 अप्रैल सन 1828 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। ये एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार था जहां भारतीय पारंपरिक मूल्यों का अत्यधिक महत्व था तथा इसके साथ ही आधुनिक शिक्षा की ओर भी इसका झुकाव था। उनके पिता उनकी शिक्षा को लेकर अत्यधिक गंभीर थे। गणेश वासुदेव जोशी की आरंभिक शिक्षा सतारा में ही संपन्न हुई। वो बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। उनके भीतर सामाजिक विसंगतियों को लेकर शुरू से ही गहरी संवेदना थी। सतारा में रहते हुए उन्होंने ब्रिटिश शासन की कार्यशैली और स्थानीय जनता की समस्याओं को अत्यंत निकट से देखा था। यही कारण है कि बाद में उन्होंने इन वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। सन 1848 में वो पुणे पहुंचे। ये उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। यहाँ आरंभ में उन्होंने एक सरकारी लिपिक के रूप में काम किया और फिर उन्होंने कानून की पढ़ाई की और एक प्रखर वकील बन गए। ये केवल उनके धनोपार्जन का साधन नहीं था बल्कि इस माध्यम से उन्होंने समाज सेवा का विस्तार किया। अंग्रेजी कानून की पेचीदगियों को मराठी में समझाकर उन्होंने लोगों का साथ दिया और एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में वो लोकप्रिय हुए। इस तरह उनकी अजेय यात्रा आरंभ हुई।

सन 1857 में जब प्रथम स्वाधीनता संग्राम आरंभ हुआ, तब गणेश वासुदेव जोशी ने अंग्रेजों के अत्याचार और उनकी बर्बरता के जो दृश्य देखे, उसने उन्हें भीतर तक झकझोर कर रख दिया। उन्होंने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने ये समझ लिया था कि अंग्रेजों की शक्ति का आधार उनका व्यापार है, इसलिए उनके व्यापार को कमजोर करना अत्यंत आवश्यक है। ये वो समय था जब अंग्रेज सारा कच्चा माल भारत से ले जाते थे और अपने कारखानों में बना हुआ सामान भारत में खपाते थे। इससे भारत में शिल्प की मौलिकता घट रही थी और इससे उत्पन्न बेरोजगारी के कारण उन्हें सस्ते कामगार भी मिल रहे थे। अपना उत्पाद भारत में बेचकर वो लाभ भी कमा रहे थे। इसीलिए गणेश वासुदेव जोशी ने अंग्रेजों की इसी नींव पर प्रहार करने का निर्णय लिया। इस तरह स्वदेशी की चेतना ने उनके भीतर जन्म लिया। उन्होंने युवाओं की एक टोली बनाई, उनमें स्वाभिमान का भाव जगाया और ये प्रचार आरंभ किया कि यदि सभी भारतीय फिर से अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करें और अपनी आजीविका के लिए अपने कुटीर उद्योग स्थापित करें, तो अंग्रेज स्वयं ही कमजोर हो जाएंगे। इस टोली में दो युवा, महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले भी जुड़े। इन युवाओं को आगे करके गणेश वासुदेव जोशी ने सन 1870 में सार्वजनिक सभा का गठन किया। परिवारों को इससे जोड़कर उनसे कुटीर उद्योग स्थापित करवाए तथा स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन आरंभ करवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने विक्रय केंद्र भी स्थापित किए। इन कुटीर उद्योगों और विक्रय केंद्रों में हथकरघा और चरखे द्वारा बनाए गए कपड़े तथा इन कपड़ों से बने विभिन्न वस्त्र होते थे। पूना सार्वजनिक सभा एक क्रांति थी जिसने लोगों को स्वदेशी का पाठ पढ़ाया। इस सभा की प्रमुख विशेषता थी इसका लोकतांत्रिक स्वरूप। इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 50 लोगों का समर्थन पाना आवश्यक होता था। उस समय में ये एक अत्यंत आधुनिक विचार था। ये सभा आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला बनी। स्वदेशी आंदोलन के इतिहास में गणेश वासुदेव जोशी का नाम गांधी जी से भी पहले एक पथ प्रदर्शक के रूप में आता है। सन 1872 में गणेश वासुदेव जोशी ने एक क्रांतिकारी संकल्प लिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से शपथ ली कि वो अपने आगे के जीवन में केवल भारत में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करेंगे और विशेष रूप से हाथ से बुने हुए खादी के कपड़े ही पहनेंगे। उस समय ब्रिटिश मिलों के महीन कपड़ों को त्याग कर भारतीय खादी को अपनाना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। ये एक राजनीतिक विद्रोह था, लेकिन गणेश वासुदेव जोशी ने निर्भय होकर आजीवन स्वदेशी को अपनाने का उद्घोष कर दिया।

गणेश वासुदेव जोशी ने अपना जीवन समाज सेवा के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह गोपाल कृष्ण गोखले से किया था। उनकी बेटी ने भी अपने पिता की प्रेरणा से रानाडे की पत्नी रामाबाई रानाडे के साथ मिलकर विचारवती संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था महिलाओं को जागृत करना तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। इस संस्था को भी कुटीर उद्योग से जोड़ा गया। अपने कार्यों के कारण गणेश वासुदेव जोशी इतने लोकप्रिय हो गए कि सभी उन्हें काका साहब कहने लगे। इस तरह वो सार्वजनिक काका कहलाए। वो स्वयं, उनका परिवार और उनकी बनाई युवाओं की टोली सभी पूरी तरह से स्वदेशी जागरण अभियान को समर्पित थे। उनके जीवन का अत्यंत साहसिक और ऐतिहासिक क्षण तब आया जब वो 1 जनवरी सन 1877 को दिल्ली दरबार में शामिल हुए। वो उस दरबार में पूर्ण स्वदेशी भारत में निर्मित खादी के वस्त्र पहनकर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि महामहिम महारानी जी भारतीय प्रजा को वही राजनीतिक और सामाजिक दर्जा प्रदान करें जो उनकी ब्रिटिश प्रजा को है। उनके वस्त्रों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अंग्रेजों ने इस मूक प्रतिरोध को भांप लिया। भारतीयों के लिए नागरिक सम्मान की बात करके सबका ध्यान उन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। सन 1876 से 1878 के बीच दक्कन में भीषण अकाल पड़ा था। लाखों लोगों का जीवन संकट में था। अंग्रेजों की क्रूर राजस्व वसूली और संवेदनहीनता के विरुद्ध उस समय सार्वजनिक सभा ने गणेश वासुदेव जोशी के नेतृत्व में मोर्चा संभाला। उन्होंने किसानों को उनके कानूनी अधिकार के प्रति जागरूक किया और उन्हें भू राजस्व में छूट की मांग करने के लिए संगठित किया। गणेश वासुदेव जोशी की निर्भीकता का एक और उदाहरण सन 1879 में सामने आया जब उन्होंने सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के का बचाव किया। फड़के को आदि क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का बिगुल फूंका था। जब वो पकड़े गए थे तब सरकार ने उनके विरुद्ध राजद्रोह और डकैती के गंभीर आरोप लगाए थे। उस समय पुणे का शिक्षित वर्ग भी सरकार के कोप भाजन से बचने के लिए फड़के जी से दूरी बना रहा था। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में गणेश वासुदेव जोशी ने उनके वकील के रूप में खड़े होने का साहस दिखाया। उनके द्वारा स्थापित सार्वजनिक सभा ने बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर जैसे नई पीढ़ी के नेताओं को वो धरातल प्रदान किया जहां से उन्होंने राष्ट्रवाद की इस लड़ाई को आगे जारी रखा। गणेश वासुदेव जोशी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो एक पूरी संस्था थे। वो सचमुच सार्वजनिक काका थे। सार्वजनिक शब्द को उन्होंने उसके वास्तविक अर्थों में जिया। लगातार सार्वजनिक सक्रियता, भागदौड़, कानूनी लड़ाई करते हुए 25 जुलाई सन 1880 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: इतिहास के पन्नों से

0: भी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि हमने गोंड राजवंश की बात शुरू की थी गढ़ा मंडला से, उसके बाद हमने बात की देवगढ़ की, चंद्रपुर की, खेरेला की और अपने पिछले एपिसोड में मकड़ाई की। इन सारी जगहों के बारे में, इन सारे राजवंशों के बारे में हमें जानकारी दी डॉक्टर पूजा सक्सेना ने, प्रसिद्ध पुरातत्वविद। पूजा जी एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं आप सभी की ओर से।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: पूजा जी, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, किस राजवंश की बात करेंगे, किस गोंड राजवंश की?
1: आज हम गिन्नौरगढ़ भोपाल के गोंड राजवंश की बात करेंगे।
0: आज की कड़ी खास क्यों है ये भी श्रोताओं को हमारे बता दीजिए।
1: हमने बहुत विस्तृत रूप से गोंड राजवंश के बारे में जाना और देखा कि कई सारे राजवंशों ने मध्य भारत पर शासन किया
0: जी।
1: और वो भी उस समय जब बहुत विपरीत परिस्थितियां थी। दिल्ली पर मुगलों का शासन था और लगातार संघर्ष जारी था। मुगल कोशिश कर रहे थे कि वह नर्मदा पार करके दक्कन में प्रवेश कर जाएं, क्योंकि दक्कन में उस समय जहाज के सारे जो खास पत्तन थे वो वहीं थे
0: जी।
1: तो यदि इस मध्य भारत से निकलने वाले व्यापारिक मार्ग पर जिसका भी अधिकार होगा वही राजस्व वसूलेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो दिल्ली से लगातार मध्य भारत पर अटैक हो ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो जनजातियाँ थीं, जो कभी प्रत्यक्ष रूप में आकर शासन नहीं कर रही थीं, वो भी उस समय सामने आई और इस क्षेत्र को शासन किया और उसको बचाया
0: जी।
1: बाहरी आक्रांताओं से
0: जी जी।
1: तो बहुत सारे राजवंश तो हम देख ही चुके हैं
0: जी।
1: और इन राजवंशों की कड़ी में आखिरी कड़ी है गिन्नौरगढ़ भोपाल के गोंड राजवंश की। आपने नाम तो सुना ही होगा, रानी कमलापति।
0: बिल्कुल।
1: तो आज हम रानी कमलापति और उनके राजवंश के बारे में जानेंगे।
0: तो श्रोताओं, कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में पिछले कई एपिसोड से हमारी जो श्रृंखला चल रही थी गोंड राजवंश के ऊपर, वो आज यहाँ पर समाप्त होने जा रही है और जो समापन हो रहा है वो गिन्नौरगढ़ और भोपाल के गोंड राजवंश की जानकारी के साथ हो रहा है। तो पूजा जी शुरू करते हैं, बस हमारे श्रोता बहुत बेकरार हैं आपको सुनने के लिए।
1: बिल्कुल, हमने ये इतिहास गढ़ा के गोंड मंडला से शुरू किया था और जैसा कि हम जानते हैं कि नरई के युद्ध में रानी दुर्गावती ने प्राणोत्सर्ग किया और सर्वोच्च बलिदान दिया इस भूमि की रक्षा के लिए और उसके परिणाम स्वरूप गढ़ा के गोंड मंडला राज्य को 10 गढ़ मुगल शासक अकबर को देने पड़े। लेकिन इस बात पर भी हमने चर्चा की है कि जल्दी ही अकबर ने भी ये 10 गढ़ जो थे वापस गोंडों को लौटा दिए। उसका कारण ये था कि ये बड़ा वनों से आच्छादित क्षेत्र है, खूब पशु हैं और जनजातियों का इस क्षेत्र पर बहुत ही सुदृढ़ होल्ड रहा है। तो अकबर के बस में नहीं था कि वो इस क्षेत्र को शासित कर पाता
0: जी। बिल्कुल,
1: ऐसे लिखित साक्ष्य हैं
0: जी।
1: तो अकबर ने जब ये 10 गढ़ लौटाए तो उन्होंने गढ़ा मंडला को ये गढ़ नहीं लौटाए, उन्होंने बल्कि जो स्थानीय गोंड प्रमुख थे
0: जी।
1: उनको ये गढ़ लौटा दिए।
0: अच्छा।
1: उसमें से जो गिन्नौरगढ़, भोपाल, बाड़ी, ये जो आसपास का क्षेत्र है जो आजकल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और उसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ के जो 4-5 गढ़ थे वो उन्होंने स्थानीय प्रमुखों को लौटाए।
0: अच्छा।
1: तो उसमें से जो सर्व प्रमुख गढ़ था वो था गिन्नौरगढ़ का किला। ये किला भोपाल से दक्षिण दिशा में लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है और जिला सीहोर में आता है।
0: अच्छा।
1: तो ये किला जो था ये व्यापारिक मार्ग पर था, भोपाल से या विदिशा से आप नर्मदापुरम की तरफ जा रहे हैं
0: जी जी,
1: नर्मदा क्रॉस करने के लिए, तो बड़ा ही एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनता था गिन्नौरगढ़
0: जी।
1: तो वहां पर एक प्राचीन किला हुआ करता था परमारों का, क्योंकि इस किले में आज भी परमारों प्रतिहारों के मंदिरों के बहुत से अवशेष हैं।
0: अच्छा।
1: तो ये कोई पुराना किला रहा होगा। बाद में फिर उसी किले पर, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो स्थानीय सेना नायक होते थे या किलेदार हुआ करते थे वो स्थानीय गोंड हुआ करते थे, तो जब परमारों का शासन समाप्त हुआ तो उन्हीं गोंडों ने फिर वहां पर शासन स्थापित किया। तो गिन्नौरगढ़ पर भी कोई गोंड रहे होंगे, हालांकि शुरू का इतिहास स्पष्ट नहीं है, मिलता नहीं है लिखित इतिहास। तो ये जो किला था बड़ी सामरिक पोजीशन पर था, हमको 1720 के आसपास का इतिहास मिलना शुरू होता है। तो एक नाम आता है निजाम शाह।
0: अच्छा।
1: तो गिन्नौरगढ़ का शासक था निजाम शाह। उस समय निजाम जैसे जो नाम थे वो टाइटल के रूप में दिए जाते थे, तो संभवतः वो उनका टाइटल रहा होगा। जैसा अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि शाही सरनेम हुआ करता था
0: जी।
1: निजाम शाही जी। वो बाद में लिखते लिखते शाह हो गया।
0: अच्छा।
1: तो निजाम शाह का इतिहास हमें मिलता है
0: जी।
1: और इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें तो हमें दिखाई देता है कि उनकी जो अदावत थी वो अपने ही रिश्ते के भाई से थी, और उनके भाई का नाम था आलम शाह। तो आलम शाह को चैनपुर बाड़ी में भी एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था जसवंत सिंह।
0: अच्छा।
1: तो जसवंत सिंह ने किसी बात पर भड़काया निजाम शाह के खिलाफ।
0: अच्छा।
1: और आलम शाह इतना भड़क गया कि उसने निजाम शाह की धोखे से हत्या कर दी। तो जब निजाम शाह की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनकी जो रानी थी, रानी कमलापति, वो थी, और उनका एक अल्पवयस्क बेटा था नवल शाह।
0: अच्छा।
1: तो वो दोनों थे। तो अब जो है शासन का भार आ गया नवल शाह पर, लेकिन नवल शाह क्योंकि बालिग नहीं थे तो शासन संभाला रानी कमलापति ने।
0: अच्छा।
1: अब दो केंद्र बने गिन्नौरगढ़ के।
0: जी।
1: एक तो है गिन्नौरगढ़ का किला।
0: जी।
1: और दूसरा भोपाल में उनका ही एक छोटा सा किला हुआ करता था जिसे आज रानी कमलापति का महल या पुराना किला या किला कोहना के नाम से भी जानते हैं।
0: जी जी जी
1: तो यहाँ दोनों केंद्र स्थापित हुए। तो रानी को ज्यादा ठीक लगा कि वो भोपाल से शासन करें। उन्होंने अपना केंद्र स्थानांतरित करके भोपाल का जो किला था उनका वो कर लिया।
0: जी।
1: तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1720 के आसपास तक रानी कमलापति ने अपना शासन संचालित करना आरंभ कर दिया।
0: पूजा जी, जैसे कि आपने बताया कि रानी कमलापति ने अपने शासन करने के लिए भोपाल को चुना, जो कि गिन्नौरगढ़ से जब आज 60 किलोमीटर दूर है, तो तब तो परिस्थितियां और काफी दुर्गम रही होंगी। तो किस तरीके से, क्योंकि बड़ा किला तो गिन्नौरगढ़ का था, तो वहां किस तरह से शासन किया और गिन्नौरगढ़ के किले की क्या क्या खासियतें हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: गिन्नौरगढ़ का किला, जैसे मैंने कहा कि व्यापारिक मार्ग पर था
0: जी,
1: और बड़ी सामरिक स्थिति रही होगी उसकी
0: जी।
1: तो ये भी एक बड़ी ऊंची पहाड़ी पर है, और आजकल तो ये जो क्षेत्र है रातापानी अभ्यारण्य कहलाता है
0: जी।
1: और देलावाड़ी चेक पोस्ट बनती है। तो आज तो जाना भी बड़ा दुर्गम है वहां तक पहुंचना, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट है तो पशुओं की संख्या भी बहुत अधिक है।
0: हाँ।
1: तो उस समय भी दुर्गम रहा होगा, किले तो दुर्गम स्थानों पर ही बनाए जाते थे। तो ये जैसा हम पहले भी कहते आए हैं कि गोंडों का एक तरीका था किले निर्माण का, तो यहाँ पर भी बहुत ऊंची पहाड़ी है एक, और आप दूर से ऐसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि किले की ऊंची ऊंची दीवारें आप चारों तरफ से देख रहे हैं, जबकि वो दीवारें नहीं है। किले की जो पहाड़ी है उसका कुछ टेक्चर ऐसा है, ये बालुकाश्म सेडिमेंटरी रॉक्स हैं, कुछ इस तरीके का टेक्चर है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि बड़ी ऊंची दीवारें बनी हुई है।
0: अच्छा।
1: जबकि वो आपको पहाड़ी का सरफेस दिखाई देता है। लेकिन किले की पहाड़ी पर दो प्राकृतिक तालाब भी हैं।
0: जी, जैसे तो कि ज्यादातर गोंड राजवंशों के किले में होता है।
1: जी हाँ, पानी की आवश्यकता तो होगी
0: जी।
1: तो यहाँ दो तालाब हैं। तो किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उत्तर दिशा में है, और हमने जैसे पहले भी बात की है कि तीन ओर से पहाड़ी जो है वो खड़ी हो, ऐसी ढलान वाली पहाड़ी देखी जाती थी
0: जी।
1: तो इसमें भी ऐसा ही है जिससे शत्रुओं का एकदम से आगमन ना हो पाए
0: जी।
1: और इस पहाड़ी के चारों ओर खाई भी रही होगी, ऐसे भी प्रमाण है। और जहाँ उत्तर की ओर मुख्य द्वार है उस तरफ तो खाई की गहराई ज्यादा है, चौड़ाई भी ज्यादा है
0: जी।
1: अब तो पानी नहीं है, लेकिन उस समय पानी रहा करता होगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो है वो ब्रिज डालते होंगे जिसको क्रॉस करके फिर आप उस पहाड़ी के
0: उस पार जा सकते हैं जी, जी।
1: तो इस तरीके से इसका संयोजन है सुरक्षा की दृष्टि से, और चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। एक पहाड़ी का नाम तो है अशरफी पहाड़ी।
0: अच्छा।
1: हाँ, और अशरफी पहाड़ी की एक कहानी भी है। लोग कहते हैं कि जब गिन्नौरगढ़ का किला था उस समय कुछ निर्माण कार्य हो रहा था
0: जी।
1: तो मिट्टी की जरूरत थी, तो लोग कहते हैं कि राजा ने कहलवाया कि जो भी एक टोकरी मिट्टी लाएगा उसके बदले में एक अशरफी मिलेगी।
0: अच्छा।
1: तो लोग लाके उस जो मुख्य पहाड़ी है उसके पास में मिट्टी इकट्ठी करने लगे, तो उनको बदले में एक टोकरी के एक अशरफी मिलती, और यहाँ तो पूरा अंबारी लग गया
0: जी,
1: मिट्टी
0: जी।
1: का, तो वो कहते हैं कि अशरफी पहाड़ी ऐसे नाम पड़ा।
0: अच्छा।
1: तो किला है, किले में ऊपर कई सारे महल हैं और एक हमाम है।
0: अच्छा।
1: तो महल बहुत खूबसूरत है, और आपने अगर भोपाल में देखा होगा मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक होटल है, उसका जो एंट्रेंस गेट बनाया है वो इसी स्थापत्य से, जो किले में महल है, गोंड महल है, उसका जो एंट्रेंस है उससे प्रभावित होकर बनाया है।
0: अच्छा।
1: तो हाँ, पर ये जो महल है इसमें कई सारे कमरे हैं, बहुत खूबसूरत ब्रैकेट्स हैं, काफी टूट भी गया है
0: जी।
1: लेकिन इस महल का जो हमाम का भाग है वो अभी

0: हैं कि क्योंकि ये पूरा वन क्षेत्र है तो
1: जी
0: यहाँ पर टाइगर भी रहा करता था आके,
1: जी
0: फिर अभी आजकल तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर काफी सुरक्षा के साथ में वन विभाग जो है वो गिन्नौरगढ़ के किले तक जाने देता है।
1: जी जी
0: तो ऐसा ये गिन्नौरगढ़ का किला है और दूर दूर तक बड़ा स्पष्ट नजर आता है, तो शत्रुओं पर जो
1: जी
0: नजर रखी जा सकती है
1: बिल्कुल
0: वो यहाँ से का बड़ा अच्छा प्रबंध इन्होंने किया हुआ है।
1: निश्चित रूप से बहुत बिल्कुल वन आच्छादित पूरा क्षेत्र है, और सलकनपुर जाते समय ये
0: जी
1: जगह
0: जी जी
1: पड़ती है, बिल्कुल सलकनपुर से
0: बिल्कुल
1: बहुत बिल्कुल थोड़ी सी पहले।
0: हाँ। और इसी मार्ग पर आगे जाएं तो पान गुड़ारिया है।
1: अच्छा
0: हाँ, क्योंकि हम पहले से ही ये बात कह रहे हैं कि व्यापारिक मार्ग बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे, तो सम्राट अशोक जो कि गोंड काल से तो लगभग 1700-1800 साल पहले हुए
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: वो भी इस मार्ग से गुजरे होंगे, क्योंकि आज जहाँ आपने सलकनपुर बोला, गिन्नौरगढ़ बोला,
1: जी
0: उसके पास में ही एक साइट है पान गुड़ारिया, वहाँ पर दो शिलालेख हैं अशोक के,
1: अरे
0: एक
1: वाह
0: जब वो राजा बने उससे पहले का
1: जी
0: और एक जब वो राजा बन गए उसके बाद का,
1: वाह
0: तो इतना महत्वपूर्ण ये क्षेत्र रहा होगा।
1: जी। और पूजा जी, जो भोपाल में रानी कमलापति का महल कहलाता है, वो उस समय किस तरह का था?
0: हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर महल है,
1: जी
0: महल सुंदर है और रानी भी बड़ी सुंदर थी, तो ये जो महल है वो भोपाल तालाब के आसपास ही बनाया गया था। और हम जैसे पहले से कहते आ रहे हैं कि जो गोंड किले हैं वो पहाड़ी के ऊपर समतल स्थान पर नहीं होते, बल्कि जो पहाड़ी की ढलान होती है उसका उपयोग करते हुए बनाते हैं।
1: जी
0: तो यहाँ क्या हुआ भोपाल में कि पहाड़ी तो थी नहीं किला बनाने के लिए, जो स्थान उन्होंने चुना, तो स्थान कौन सा चुना, जहाँ पर परमार काल का एक बांध था,
1: हाँ
0: ये बांध राजा भोज के द्वारा बनाया गया था कोलास नदी के पानी को नियंत्रित करने के लिए,
1: जी
0: जिसके कारण भोपाल का बड़ा तालाब बना।
1: जी बिल्कुल
0: तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इसी बांध का उपयोग किया, तो बांध की भी जो ढलान है उसी पर ही महल बना लिया, तो नीचे बांध है
1: जी जी
0: और उसी को नींव की तरह उपयोग करते
1: उपयोग करते
0: हुए
1: हुए जी
0: कई मंजिला महल बनाया।
1: जी
0: अभी किले की दो मंजिलें हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं
1: जी
0: और तीन मंजिलें थोड़ा सा छुपी हुई सी दिखाई देती हैं, और भोपालियों की आप माने तो अभी तो 7 मंजिलें और डूबी हुई हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, जिस तरफ छोटा तालाब है
1: जी
0: वहाँ भोपाली मानते हैं कि 7 मंजिलें और डूबी हुई हैं, यानी कि अभी 5 मंजिल तो हमको दिख रही है। सात मंजिल और डूबी हुई हैं,
1: ओ
0: और ये संभव भी हो सकता है, कह नहीं सकते, एक मंजिल तो डूबी हुई है। जब मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए रानी कमलापति के महल का डॉक्यूमेंटेशन कार्य कर
1: जी
0: रही थी तब मैं नाव से उस तरफ गई थी
1: अच्छा
0: और मैंने देखा कि हाँ, एक मंजिल तो डूबी हुई दिख रही है।
1: दिख रही है
0: अब 7 मंजिल है कि नहीं ये तो नहीं मालूम। हाँ, ये जरूर है कि जब रानी कमलापति रही होंगी उस समय ये शायद बगिया रही होगी, जहाँ आज छोटा तालाब है बांध
1: अच्छा
0: के दूसरी तरफ।
1: जी जी
0: तो क्योंकि खसरा में अगर देखिए तो आज भी ये गिन्नौरी बगिया कहलाता है,
1: जी जी जी
0: तो हो सकता है क्योंकि ये जो तालाब है छोटा तालाब ये बाद में बना,
1: जी
0: तो इस स्थान पर बगिया रही होगी, इसीलिए हो संभव है कि कुछ मंजिलें और नीचे होंगी।
1: अच्छा
0: और एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो मुख्य किला है उसका नाम है गिन्नौरगढ़,
1: जी जी
0: गिन्नी है ना,
1: जी जी
0: गिन्नी यानी पैसा,
1: बिल्कुल
0: तो गिन्नौरगढ़।
1: हाँ
0: और ये जो क्षेत्र कहलाता है जहाँ रानी कमलापति का महल है इसको कहते हैं गिन्नौरी
1: गिन्नौर
0: बगिया
1: जी
0: या गिन्नौरी तलैया,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: वो गिन्नौरी गिन्नौरी हमको बहुत सारी चीजें इस तरीके की
1: बिल्कुल।
0: दिख रही हैं।
1: तो पूजा जी, ये जो गिन्नौरगढ़ गिन्नौरी है, ये महज इत्तेफाक था या कोई इसके पीछे कोई कारण भी था?
0: ऐसा स्पष्ट ज्ञात तो नहीं है कि किसके पीछे क्या कारण था कि इस तरीके के नाम आ रहे हैं, गिन्नौर गिन्नौरी
1: जी
0: और इधर अशरफी, इस टाइप के नाम
1: जी
0: है, उस समय कुछ प्रचलन में रहा होगा। पर ये जो रानी कमलापति का महल है
1: जी
0: ये आज राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है
1: अच्छा
0: और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसको संरक्षित करता है। आज तो किले का बहुत छोटा सा हिस्सा ही बाकी है, जैसा कि मैंने बताया कि बांध है
1: जी
0: और बांध के ऊपर गोंड महल है
1: जी
0: जिसकी 5 मंजिलें आज भी हैं,
1: जी जी
0: लेकिन ये किला बहुत बड़ा था। अगर हम आज भोपाल के बड़े तालाब और छोटे तालाब के किनारे को ध्यान से देखें
1: जी
0: तो हमको कई सारे बुर्ज दिखाई देते हैं।
1: जी
0: एक बुर्ज
1: बिल्कुल
0: पर तो आपने शायद देखा भी होगा राजा भोज की प्रतिमा खड़ी
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल
0: वो भी गोंड किले का ही एक भाग है,
1: अच्छा
0: गोंड किले की ही एक बुर्ज है। तो इस तरीके की कई बुर्ज थी और दीवारें भी थी। आपने ये भी जरूर देखा होगा कि जब बड़े तालाब में पानी कुछ कम होता है
1: जी
0: तो एक दीवार भी तालाब के अंदर जाती हुई
1: जी जी नजर
0: स्पष्ट
1: आती है
0: दिखाई
1: जी
0: देती
1: जी
0: है, तो ये भी क्या है कि जो गोंड किला था उसकी दीवार है। कई सारे बुर्ज और दीवारें छोटे तालाब और बड़े तालाब को घेरते हुए ये पूरा गोंड किला बनाते थे
1: जी जी।
0: और जो बड़े तालाब का बहुत सारा हिस्सा है वो किले के अंदर आता था।
1: अच्छा
0: जी हाँ, तो ये सुरक्षा प्रदान करता था रानी कमलापति के महल को।
1: और ये कितना खूबसूरत रहा होगा कि किले के अंदर ही इतना समंदर सा तालाब उनके यहाँ पर रहा होगा।
0: जी हाँ, और अगर आप महल के अंदर देखें तो वहाँ पर भी जल व्यवस्था बड़ी अच्छी है।
1: अच्छा,
0: हमने डॉक्यूमेंटेशन के दौरान देखा कि दीवारों के अंदर टेराकोटा पाइपलाइन है।
1: अच्छा,
0: और जो रानी कमलापति का महल है उसके ठीक पास में एक भवन है जिसका नाम है पंचक्की।
1: अच्छा
0: हाँ, अगर आप भोपालियों से कभी पूछेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पर गेहूं पीसने की चक्की हुआ करती थी। तो असल में पुराने जमाने में चक्की जब चलती थी तो उसमें गेहूं भी पिस जाता था और पानी को लिफ्ट करने का भी वो काम आता था। तो हम देख रहे हैं कि 17वीं-18वीं शताब्दी में यहाँ लिफ्ट करने के लिए एक पूरी पंचक्की लगी हुई थी और छत के ऊपर टैंक है,
1: वहां तक पानी
0: महल
1: पहुंचा
0: के,
1: रही
0: हाँ
1: थी,
0: जी हाँ, महल के छत पर टैंक है और उस टैंक तक पानी पहुंचाने के लिए पंचक्की लगी होगी और फिर दीवारों से में जो पाइपलाइंस थी
1: जी जी
0: उनके जरिए जो है यहाँ पर पानी पहुंचाया जाता होगा। और कमलापति के महल में फव्वारा भी है।
1: अच्छा,
0: तो ये बड़ा खूबसूरत दिखाई देता होगा, फव्वारा चलता होगा। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि रानी कमलापति के महल का एक हिस्सा है जो बिल्कुल छोटे तालाब के किनारे पर है,
1: जी
0: वहां पर तो उस कक्ष के छत पर इस तरीके का इंतजाम है कि कमरे के बाहर कुछ इस तरीके का नजारा कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था कि छत से बारिश का पानी गिर रहा है, इस तरीके का एक दृश्य आर्टिफिशियली उत्पन्न किया जाता था। उसके लिए कई सारी पाइपलाइंस डाली गई हैं, टैंक डाले गए हैं, तो बड़ा ही सुंदर दिखाई देता होगा।
1: तो गोंड, देखिए, राजवंशों की बात हो रही है। आज हम अपनी अंतिम कड़ी तक आ पहुंचे हैं और आज हम बात कर रहे हैं गिन्नौरगढ़ की और भोपाल की रानी कमलापति की। पूजा जी, क्योंकि समय की भी कमी है, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि रानी कमलापति का शासनकाल बहुत ज़्यादा लंबा तो रहा नहीं है और फिर ये कहा जाता है कि उन्होंने छोटे तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी थी, तो क्या ये बात सच है और ऐसा उन्होंने किया क्यों?
0: जी हाँ, रानी कमलापति ने भोपाल राज्य की अस्मिता के लिए आत्मोत्सर्ग किया था। हम देखते हैं कि सन 1707 में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो गई।
1: हाँ।
0: और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो उनके जितने भी सिपासालार सेनापति थे उन सबको लगा कि अब ये मुगल शासन बहुत समय तक रहेगा नहीं, और सुदृढ़ तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो उनमें से अनेक लोगों ने यह प्रयास किया कि वो कहीं और जाके अपनी शासन स्थापित कर लें। तो उसमें ही एक नाम आता है सरदार दोस्त मोहम्मद का।
1: अच्छा,
0: ये जो सरदार दोस्त मोहम्मद था ये अफगानिस्तान से आया था, तिराह नाम की एक जगह है।
1: अच्छा।
0: वहां से तो ये यहाँ पर रोजगार ढूंढता हुआ पंजाब पहुंचा, लेकिन क्योंकि इसकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी नहीं थी तो जब ये पंजाब पहुंचा तो अपने बहनों ही क्या रहता था, बहन क्या
1: जी,
0: क्योंकि बहुत गुस्सैल था, किसी बात पर उसका झगड़ा हुआ और जिसने उसे प्रश्रय दिया था उसी की हत्या करके वहां से भाग गया। और भागकर फिर पहुंचा दिल्ली।
1: अच्छा,
0: और दिल्ली तक पहुंचते हुए भी उसने अनेक ऐसी हरकतें की और फिर आखिरकार जुगाड़ लगाकर वो औरंगजेब की सेना में भर्ती हो गया।
1: अच्छा,
0: और एक युद्ध के सिलसिले में उसको मालवा आने को मिला।
1: जी जी।
0: तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो दोस्त मोहम्मद को लगा कि मालवा जाना ज्यादा ठीक है, वहां वह कुछ अपने लिए कर सकता है
1: जी।
0: तो वो मालवा की तरफ आया, पर कुछ समय मालवा में गुजारने के बाद फिर वो, क्योंकि वो रोजगार की तलाश में तो था ही, तो भोपाल के पास एक रियासत हुआ करती थी मंगलगढ़।
1: अच्छा।
0: वहां के राजा थे आनंद सिंह
1: जी।
0: तो वहां पर वो कि राजा युद्ध के लिए गए और फिर वो लौटे ही नहीं, उनकी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई।
1: अच्छा।
0: जिसका शक जो है वो दोस्त मोहम्मद पर जाता है।
1: ओ।
0: और जब मृत्यु की खबर आई तो दोस्त मोहम्मद तो इस ताक में था ही कि वो कैसे मंगलगढ़ को धोखा देता है, कैसे उनकी संपत्ति लूटता है
1: जी।
0: और फिर उसने वहां पर भी सारी विपरीत स्थितियां खड़ी की, रानी की भी मृत्यु हो गई और उसने फिर वहां मंगलगढ़ का सारा खजाना लूट लिया।
1: ओ।
0: और उस खजाने को लूट कर वो भोपाल की तरफ आया।
1: अच्छा।
0: तो यहाँ भोपाल में एक जगह का नाम है सरसिया, जिसको आजकल बैरसिया बोलते हैं।
1: बैरसिया का पहले नाम सरसिया था।
0: हाँ जी हाँ। तो उसने सरसिया को लीज पर लिया, क्योंकि जो पैसे वहां से लूटे थे
1: जी जी जी।
0: उन पैसों से उसने सरसिया को लीज पर ले लिया
1: जी।
0: तो एक जगह उसके पास हो गई जहां पर उसने लूट का सामान भी रखा
1: जी।
0: और उसके बाद फिर वो ढूंढने लगा कि अब मैं क्या करूं
1: जी।
0: तो भोपाल के पास एक जगह है जगदीशपुर
1: जी जी।
0: वहां पर देवड़ा राजपूतों का शासन था।
1: अच्छा।
0: तो उसने उनको भी कुछ धोखा देकर और राजा की हत्या कर दी और जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया
1: जी।
0: और बाद में इसी जगदीशपुर का नाम बदलकर उसने इस्लाम नगर किया और अभी कुछ ही समय पूर्व वापस इसका नाम जगदीशपुर कर दिया गया। तो इस तरीके से वो भोपाल के आसपास उसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली
1: जी।
0: अब उसकी नजर जो थी वो भोपाल के गोंड राज्य पर थी
1: जी।
0: तो वो कई प्रयास करता रहा पर सफलता हाथ नहीं लग रही थी। आखिरकार उसने पूरी एक अच्छी सेना इकट्ठी की
1: जी।
0: और गिन्नौरगढ़ के राज्य पर हमला बोल दिया
1: जी।
0: तो उस समय नवल शाह जो थे उनकी आयु बहुत कम थी
1: जी।
0: पर वह युद्ध के लिए आगे गए।
1: अच्छा।
0: और कहते हैं कि नवल शाह और दोस्त मोहम्मद के बीच में जो आजकल भोपाल में बैरागढ़ कहलाता है
1: जी जी
0: है ना वहाँ बैरागढ़ के पास सॉरी जो आजकल भोपाल में लाल घाटी कहलाता है
1: जी।
0: वहां पर युद्ध हुआ।
1: अच्छा।
0: और जैसा कि तय था कि अगर नवल शाह युद्ध में विजय नहीं प्राप्त करते हैं तो फिर वहाँ उनकी सेना धुआं करेगी और यहाँ कुछ किलोमीटर की दूरी पर रानी कमलापति का जो महल है वहां पर ये सूचना मिल जाएगी
1: जी।
0: तो ऐसा ही हुआ। नवल शाह बड़ी वीरता के साथ दोस्त मोहम्मद से लड़े
1: जी।
0: और आखिरकार युद्ध में वह विजय प्राप्त नहीं कर सके और वहाँ लाल घाटी में धुआं किया गया
1: जी।
0: और यहाँ पर जब रानी को ये सूचना मिली कि अब दोस्त मोहम्मद गोंड महल में प्रवेश कर जाएगा
1: जी।
0: और भोपाल की अस्मिता को चोट पहुंचेगी तो रानी कमलापति ने निर्णय लिया कि वे प्राणोत्सर्ग करके अपने राज्य की अस्मिता की रक्षा करेंगी। और जैसा कि हम सुनते हैं कि उन्होंने अपने महल के पूर्वी ओर जो छोटा तालाब है वहां पर जल समाधि ले ली
1: जी।
0: और आज भी उनकी स्मृति में उस क्षेत्र को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है
1: जी। आज उस क्षेत्र में रानी कमलापति की वहां प्रतिमा भी लगाई गई है स्थापित की गई।
0: जी हाँ, रानी कमलापति ने भोपाल राज्य के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया उसके प्रति हम सब नतमस्तक हैं
1: जी।
0: और उन्हीं को सम्मान देते हुए हमने अपने नए रेलवे स्टेशन का नाम भी रानी कमलापति के नाम पर रखा
1: के
0: है।
1: नाम पर रखा है जी हाँ बिल्कुल। देखिए हम सभी नतमस्तक हैं चाहे वो वीरांगना रानी दुर्गावती हो या रानी कमलापति। गोंड राजवंश का बहुत बड़ा योगदान रहा है मध्य भारत की तरक्की में, मध्य प्रदेश की तरक्की में, हमारे प्रदेश की तरक्की में। और कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में ये जानकारी हमें दी है पूजा जी ने, पूजा सक्सेना जी ने, प्रसिद्ध पुरातत्वविद। आप सभी श्रोताओं की ओर से एक बार फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं पूजा जी को। आज गोंड राजवंश श्रृंखला की ये हमारी अंतिम कड़ी थी। अगली बार आपको किसी और विषय के बारे में जानकारी देंगे इसी कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा लेकिन आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। तो अब अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन योगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जब संसार का समस्त वैभव भी मन को तृप्त न कर सके, जीवन प्रश्नों से घिर जाए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल अनुभव और आत्मबोध में दिखाई दे, तब सत्य की खोज आरंभ होती है। और यही खोज अयोध्या के राजकुमार श्री राम को वैराग्य की उस भूमि तक ले आई है, जहां उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के श्री चरणों में बैठकर तत्व ज्ञान की याचना की। योग वासिष्ठ का ये प्रसंग केवल गुरु और शिष्य का संवाद नहीं है, बल्कि मानव चेतना के जागरण की दिव्य यात्रा है। तो आज योग संवाद कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे श्री राम द्वारा तत्व ज्ञान उपदेश हेतु प्रार्थना पर, जहां एक जिज्ञासु शिष्य की विनम्र प्रार्थना आत्मज्ञान के अमृत द्वार खोल रही है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच हमेशा की तरह उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद के आज के अंक में।
1: नमस्कार।
0: श्री राम द्वारा तत्व ज्ञान उपदेश हेतु प्रार्थना, यहाँ पहुंच गए हैं हम योग वासिष्ठ के पन्ने पलटते हुए। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि संसार के विषयों का भोग होता कैसा है?
1: संसार के विषयों का भोग अत्यंत दुखदायी होता है
0: जी।
1: अगर आप अनुभव करें, अपने अनुभव को देखें, तो राम जी जैसे विवेकवान जो लोग हैं, उन्होंने संसार में हमेशा अनित्यता परिवर्तनशीलता का दर्शन किया है
0: जी।
1: और वो ये कह रहे हैं कि संसार का कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिस सुख के बाद दुख की अनुभूति न हो। तो यहाँ जो सुख दुख है ये आगमापाई है, आता जाता है
0: जी।
1: तो ऐसे में राम जी कहते हैं कि इस संसार के दुखद और परिवर्तनशीलता को देखते हुए मेरा चित्त जो है इस विषय भोग रूपी अग्नि में जल करके दग्ध हो गया है और एकदम निर्मल हो गया है
0: जी, जी।
1: तो ऐसे में ये संसार कभी भी सुख प्रदान करने वाला नहीं है, तो मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश दें जिससे कि मेरा चित्त शांत हो सके और संसार के विषयों में जो राग द्वेषात्मक इसकी प्रवृत्ति है
0: जी, जी।
1: इस प्रवृत्ति से सर्वथा मुक्त रह सके।
0: यही भगवान श्री राम महात्माओं के संग पर भी बातचीत कर रहे हैं
1: जी।
0: तो क्या लाभ होता है महात्माओं के संग का?
1: हाँ, महात्माओं के संग को वो कहते हैं कि मुनीश्वर विविध चिंताओं से परिपूर्ण भोग समूहों और राज्यों की अपेक्षा चिंता रहित महात्मा पुरुषों द्वारा स्वीकृत एकांत सेवन ही मेरा सबसे अच्छा स्थान है और ऐसे जगह पर मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि एकांत सेवन, एकांत सेवन का अर्थ ये कभी नहीं हुआ कि हम समाज से कटकर अपने को अकेला कर लें
0: जी, जी।
1: क्योंकि चिंता रहित होकर के एकांत में रहना, जबकि आप संसार को अगर देखें तो संसार का व्यक्ति जब एकांत में होता है तो और चिंताग्रस्त होता है, उसका मन और विषयों और तरह की कल्पनाओं में घूमता फिरता है। महात्मा एकांत में एकांत का सेवन करता है क्योंकि वो चिंता रहित रहता है। तो चिंता रहित हुए बिना आप एकांत में रह करके भी भीड़ से भी भयावह स्थिति में रह सकते हैं
0: जी जी जी।
1: इसलिए आप देखेंगे कि आदमी अकेले होने से डरता है। अकेले होने से डरता क्यों है? क्योंकि जब वो अकेला होता है तब उसके पास ऐसे निरर्थक और ऐसे पता नहीं कितने कितने समय के विचार और कितने भविष्य की योजनाओं को लेकर के वो चिंतित होता रहता है। तो राम जी कहते हैं कि ऐसा महात्मा जो सभी प्रकार के चिंताओं से रहित हो और एकांत का सेवन कर रहा हो, यानी उसका एकांत किसी चिंता से युक्त नहीं है।
0: बहुत ही सुंदर शब्द है एकांत सेवन
1: जी, जी।
0: बिल्कुल सही आपने कहा कि आज के समय में जो एकाकीपन है उसको एक समस्या की तरह देखा जाता है, अकेले हो जाने को, और कितनी समस्याएं उस अकेलेपन से पैदा होती हैं। लेकिन यहाँ वो एकांत सेवन की जो बात कर रहे हैं वो चुना हुआ एकांत है,
1: बिल्कुल
0: जिंदगी की परिस्थितियों से आया हुआ एक एकाकीपन नहीं है।
1: नहीं है, वो जिंदगी से पलायन किया हुआ एकांत नहीं है
0: जी, जी, जी।
1: वो एकांत है विषय भोग दुख रूप और अनित्य विषय दोष दर्शन रूपी दावानल से दग्ध होकर के जो चित्त शुद्ध हुआ है उसका एकांत सेवन है वो
0: जी, जी,
1: यानी उस चित्त में निर्मलता है और यहाँ एकांत में हमारा चित्त मलिन होता है, इसलिए हम एकांत में जाने से भयभीत होते हैं या एकांत से बचना चाहते हैं।
0: या तो हम समस्याओं में हैं तब एकांत में जाते हैं
1: जी,
0: या एकांत में जाते हैं तो समस्याएं हो जाती हैं
1: जी।
0: दोनों बातें होती हैं जीवन में, लेकिन यहाँ एकांत के सेवन की बात हो रही है।
1: हाँ, एकांत सेवन की बात कहते हैं, ऐसे महात्माओं का संग मुझे प्रिय है। जबकि संसार में हम क्या देखते हैं, संसार में जो विषयों में जितने अधिक डूबे हुए लोग हैं, विषयों का जो जितना अधिक संग्रह किया हुआ
0: जी,
1: है
0: जी।
1: ऐसे व्यक्ति हमारे आदर के योग्य होते हैं या ऐसे व्यक्ति का हम अनुकरण करते हैं। जबकि राम जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति में मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि अंततः वो विषयों में दग्ध ही होगा, अपने चित्त को शुद्ध न करके बल्कि चित्त में एक असंतोष पैदा करेगा। आप कभी विचार करके देखें तो संसार में विषयों का सेवन असंतोष का कारण बनता है,
0: जी जी।
1: संतोष का कारण कदापि नहीं बनता,
0: जबकि हम संतोष के लिए ये करते हैं
1: जी,
0: लेकिन वो मिलता नहीं।
1: हाँ, क्योंकि संतोष से सुख मिलता है। देखिए, ऋषियों ने कितना गहरा शोध किया है, वो ये कहते हैं कि सुख विषय सेवन में नहीं है, विषय सेवन में तो दुख है, क्योंकि विषय सेवन का परिणाम असंतोष है, और जो सुख है वो संतोष की वजह से मिलता है। और यहाँ पर संसार में जब संतोष की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि ये एक प्रकार का विकास से कटना हुआ, या फिर आप एक ऐसी उदासीन विचारधारा के साथ अपने आप को विकसित कर रहे हैं जहां पर आप तो अपने पूरे विकास को ही अवरुद्ध कर देंगे। ऐसा नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर संतोष के परम सुख का अनुभव हो रहा है, और वो सुख स्थाई है, क्योंकि संतोष के बिना सुख और शांति कदापि संभव नहीं है, ये ऋषियों का शोध है।
0: अच्छा, मनुष्य हमेशा से ही राज्य आदि भोगों में लिप्त रहा है, उसकी आकांक्षा रहती है
1: जी,
0: तो क्यों संबंध रखना चाहता है वो ऐसे राज्य आदि भोगों से?
1: देखिए, सामान्य तौर पर आपको देखेंगे तो राज्य और जो विषय भोग हैं, ऐसा लगता है कि ये हमारी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए हैं, लेकिन सच ये है कि आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच भेद कर पाना मनुष्य के लिए बड़ा कठिन कार्य है। कई बार हम अपनी इच्छाओं को भी आवश्यकताओं का नाम दे पड़ते हैं।
0: जी जी जी।
1: आवश्यकताएं हर जीव की पूरी होती हैं, लेकिन इच्छा और लालच एक आदमी की भी पूरी करने में ब्रह्मांड का सामर्थ्य नहीं है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य जो है अहंकार वश इन राज्य भोगों में आकर्षित होता है, न कि सुख की आकांक्षा में। राज्य भोगों का सुख जो है वो अहंकार को तुष्ट करता है।
0: जी, जी,
1: तो राम जी कहते हैं अहंकार वश ही मनुष्य इन राज्य आदि से संबंध रखता है, किंतु मेरा अहंकार ही गल गया है, अतः मेरे लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, नहीं बची है अब। क्योंकि जिसका अहंकार नहीं है, अहंकार का आशय ये है कि जिस भी विषय व्यक्ति वस्तु के साथ आप अपने आकार को पुष्ट करते हैं वो अहंकार है।
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: ऐसे में हमारे आकार को पुष्ट करने का कोई विषय वस्तु व्यक्ति अब साधन ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा अहंकार ही गल गया है। इन विषयों के साथ मेरा अहंकार कोई रूप नहीं लेगा, और संसार में लोगों का अहंकार वो रूप लेता है, तो उस रूप के नाते इन विषयों के भोग में लोग आकर्षित होते हैं, जबकि उनको लगता है कि हम अपने आवश्यकता या अपनी इच्छाओं के लिए हम जुड़ रहे हैं। सच ये नहीं है, वो एक प्रकार से आपके अहंकार का पोषण है, और अहंकार का जन्म ही अविद्या से होता है, और अविद्या से जो युक्त पुरुष है वो निश्चित ही अहंकारी होगा, और अहंकारी व्यक्ति को राग द्वेषात्मक वृत्तियों का निरंतर सामना करना पड़ेगा, सतत उसका क्रम चलता रहेगा, उस चक्र से कभी बाहर नहीं आ सकता,
0: वो आनंद की स्थिति में आ नहीं सकता
1: जी।
0: अच्छा, इसमें अज्ञानी जो मनुष्य है उसके मन की स्थिति बताई गई है, किससे बंधा रहता है उसका मन?
1: राम जी कहते हैं विष जो संसार में होता है, इस विष से एक शरीर नष्ट होता है अगर इसका पान कर लिया
0: जी,
1: जाए
0: जी, जी।
1: लेकिन कहते हैं कि विषय रूपी विष जन्म जन्मांतर तक मृत्यु का कारण बनते हैं। तो उन्होंने विषय को विष का नाम दिया, और वो कह रहे हैं कि जो अज्ञानी का मन है वो इस संसार में सुख दुख, मित्र भाई बंधु, जीवन और मरण, इन बंधनों से बंधा रहता है। अब आप देखें तो हम इन्हीं को पुष्ट करने और इन्हीं को बनाए रखने के लिए पूरे जीवन यत्न करते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर रामचरितमानस में भरत जी के माध्यम से वो बात कही है कि सुनह भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। वो कहते हैं कि अज्ञानी जो लोगों का मन है वो हाँ निलाभ जीवन मरण यश अपयश इसी से बधा रहता है, और चूंकि इससे क्या होता है, इसका जुड़ाव किससे है, अहंकार से। तो ऐसे में अहंकारी होने के नाते यानी अविद्या से अहंकार जन्म लेता है और अहंकारी होने के नाते हम संसार के इन विषयों में जुड़े रहते हैं, बधे रहते हैं। जो ज्ञानी का मन है वो ऐसा नहीं होता, वो इनसे बिल्कुल मुक्त रहता है। ज्ञानी पुरुष के चित्त को ये बांधनित्य नहीं है जिसमें अज्ञानी पुरुष का चित्त बधा रहता
0: है। तो एक तरह से भगवान श्री राम के मन में बहुत से प्रश्न हैं और स्वयं वो देखकर भी बहुत कुछ समझ रहे हैं और एक विचलन की स्थिति है और वो गुरु वशिष्ठ से तत्व ज्ञान की प्रार्थना करते हैं। तो मेरे मन में एक सवाल था कि तत्व ज्ञान से क्या आशय है।
1: देखिए, तत्व ज्ञान से आशय ये है कि आप उस तत्व का अनुसंधान करें जो तत्व का ज्ञान नहीं होने की वजह से भूत और भविष्य का बराबर हम चिंतन करते रहते हैं और वर्तमान में जिसमें हम रहते हैं उसको हम जी ही नहीं पाते।
0: अच्छा।
1: और हमारा पूरा समय जिसको हम कहें काल, काल को हम मृत्यु से भी परिभाषित करते हैं, तो काल का मतलब ये हुआ जिसने आपके समय को नष्ट कर दिया। तो आप देखें तो आपके समय को नष्ट किसने किया, आने वाले कल ने या बीते हुए कल ने। तो बीता हुआ कल जिसे हम भूत कहते हैं और आने वाला कल जिसे हम भविष्य कहते हैं, ये कल हमारे समय का काल बन गया और हमारे वर्तमान को खा गया और वर्तमान में हमने जीने का कौशल ही पैदा नहीं कर पाया अपने जीवन में और हम पूरे समय इसी में उलझे रहते हैं। इसीलिए राम जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप प्राचीन और अर्वाचीन बातों को जानने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि भूत को भी आप जान रहे हैं और आने वाला जो समय है उसको भी जान रहे हैं। तो उनसे उन्होंने तत्व ज्ञान को जानने की चेष्टा की। ऐसे लोगों से तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त नहीं किया जा सकता जो न भूत को जान रहे हैं न भविष्य को जान रहे हैं, बल्कि भूत और भविष्य को न जानने के कारण भूत और भविष्य के चिंतन में ही उलझे हुए हैं, है ना। और संसार का आदमी देखें तो अपने भूत की स्मृतियों को लेकर के अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए ऐसे गुणीजन या ऐसे ज्ञानियों के पास, ज्योतिषियों के पास जाता है कि मेरा भविष्य क्या है और पहले ये हुआ और ऐसी इस पर बातें होती हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग तत्वदर्शी नहीं हैं। तो पहले तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को ही कहा कि आप तत्वदर्शी हैं क्योंकि आप प्राचीन अर्वाचीन बातों को जानने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए जिस प्रकार में शोक भय और खेद से मुक्त होकर यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो जाऊं वैसा उपदेश मुझे शीघ्र प्रदान कीजिए। राम जी के चित्त में अब इतनी निर्मलता आ गई है कि वो कहते हैं कि अब तो ये संसार के विषय अब हमारे चित्त में कोई स्थान तो पा नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जिससे मेरा शोक भय और खेद ये पूरी तरह से नष्ट हो जाए और ये तभी होगा जब हम यथार्थ ज्ञान से संपन्न होंगे। अब एक चीज देखिए, यथार्थ ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा ज्ञान जिसका संबंध भूत और भविष्य से नहीं है वो जो वर्तमान में है जिसको आपको जीना चाहिए लेकिन आप जीना इसलिए नहीं जानते क्योंकि पूरे समय में आपने भूत और भविष्य को अपने वर्तमान का काल बना दिया। गोस्वामी जी ने भी यही लिखा था मीरा जी को शायद कि अबलो नसानी अबना नसई हो। तो अभी तक तो हमने मतलब अपना नष्ट किया किसमें, भूत के चिंतन और भविष्य के योजनाओं में। तो अब इसको नष्ट नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए और वो तत्व ज्ञान दीजिए। तो तत्व ज्ञान का वो प्रार्थना करते हैं कि जिससे हम यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो सकें और ऐसी काल्पनिक ज्ञान जो अभी है ही नहीं जिसके बारे में सोच करके भविष्य की कितनी भी योजनाएं आज आप बना लें, क्या आप भविष्य में जो योजनाएं आज आपने बनाई हैं उसका सामना करने के लिए ऐसे ही रहेंगे। मन स्थिति बदल सकती है, परिस्थितियों के बारे में तो आपने सोचा लेकिन जिस मन स्थिति में सोचा उस मन स्थिति के बदल जाने के बाद वो उन परिस्थितियों का सोचा हुआ ज्ञान काम नहीं आता, मेल नहीं होता। यही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो मन स्थिति और परिस्थितियों के बीच तालमेल बनाना नहीं जानता। अर्जुन को भी विषाद इसी स्थिति में हुई है, ना कि वो युद्ध का कौशल तो जानते हैं लेकिन ऐसा कौशल जिसमें अपने ही युद्ध क्षेत्र में विपरीत पक्ष में खड़े हो जाएं, तो इसलिए वो विषाद से ग्रस्त हो गए। राम जी ने जगत को देखा कि जगत में कैसे व्यक्ति इस संसार के विषय विसूचिका में, इसमें वाल्मीकि जी कहते हैं विषय विसूचिका, विषय का हैजा फैला हुआ है। हैजा जिसको कहते हैं लगातार वो संक्रमित होता जा रहा है व्यक्ति, हैजा एक संक्रमण की बीमारी है। तो ऐसे ही संसार के व्यक्तियों का सानिध्य जो है वो विष की विसूचिका है, वो विष का संक्रमण करेगी। एक व्यक्ति अगर जिसने आपसे अधिक अर्जित कर लिया, वो आपको और अधिक अर्जित करने के लिए प्रेरित करेगा, संक्रमित करेगा। तो इसीलिए राम जी कहते हैं कि चिंता रहित महात्मा का संग मुझे प्रिय है, क्योंकि संसार में तो चिंतित लोग ही मिलेंगे और चिंतित लोग आपको चिंतित करने के संक्रमण से ग्रसित करेंगे, संक्रमित होंगे आप। और इसलिए संसार में चिंता मुक्ति नहीं होती,
0: चिंतित व्यक्ति चिंता ही फैलाएगा,
1: चिंता ही फैलाएगा। और हम लोग चिंतित का सानिध्य करके और अपनी चिंता बढ़ाते हैं। न कि चिंता से मुक्त होने का प्रयास करते हैं।
0: अच्छा, ये बताएं कि संसार की जो सारी दुश्चिंताएं हैं कैसे नष्ट होती हैं?
1: संसार की सारी जो दुश्चिंताएं हैं वो नष्ट होती हैं उत्तम अंतःकरण के महात्माओं के संग से।
0: अच्छा,
1: हाँ, जो राम जी ने कहा मुझे प्रिय है, क्योंकि इसी संसार में हमारे ही जैसा शरीर लेकर के वो महात्मा भी है, लेकिन उसके जीने का ढंग, उसके किसी चीज को परसीव करने का जो प्रोसेस है
0: जी,
1: वो हमसे बिल्कुल अलग है
0: जी।
1: तो कैसे वो उन विपरीतताओं में भी अपने को बिना संक्रमित किए हुए, वो जैसे कहते हैं कि कमल कीचड़ में अलिप्त रह करके अपने सौंदर्य को बनाए हुए है, तो ऐसे वो महात्माओं का संग जब हमें मिलता है तो उस संग का हम अनुकरण करते हैं। क्योंकि मनुष्य के अंदर एक जो सीखने की प्रवृत्ति है, जिसमें वो सामाजिक संज्ञान सीखता है, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि उसमें एक अनुकरण विधि है। जॉन बेंडुरा नाम का एक मनोवैज्ञानिक हुआ, उसने कहा कि जो सोशल कॉग्निशन जो मतलब आदमी को होता है वो होता है अनुकरण, इंटीमेशन, मतलब वो आदमी किसी चीज को देखता है और देख करके सीखता है। तो ऐसा महात्मा जिसका उत्तम अंतःकरण है, उसका अगर संग किया जाए तो उसके संग से संसार की दुश्चिंताएं नष्ट होती हैं। जी, और वो कहते हैं जैसे आयु वायु से टकराई हुई मेघों की घटा से झरते हुए जल बिंदु के समान क्षणभंगुर है। अब देखिए कितनी बड़ी सुंदर उपमा देगी। आयु को कहते हैं कि जैसे मेघों की घटा से झरते हुए जल बिंदु के समान क्षणभंगुर है, और हमारे कई संतों ने भी इसको कहा है कि ये कागज की नाव जैसा है, मतलब ये जीवन जिसको हम बहुत स्थायी समझते हैं कि कब वो पानी पड़ा और डूब गया उसमें,
0: या पानी के
1: बुलबुले की तरह है। लेकिन ये सब हम लोग एक दूसरे को सुनने और सुनाने के लिए कहते हैं, सुनता कोई नहीं है, इसे अमल कोई नहीं करता। तो कहते हैं कि जब इन महात्माओं का संग मिलता है तो उनके संग में, उन महात्माओं के जीवन में इस ज्ञान का दृश्य दिखाई देता है कि इस ज्ञान के साथ कैसे वो जीते हैं।
0: यानी सत्संग बहुत आवश्यक है।
1: हाँ, सत्संग, लेकिन सत्संग उन तत्वदर्शी महात्माओं के संग में होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति सत्संग कर रहा हो जो उन्हीं चीजों से ग्रस्त है जिससे आप ग्रस्त हैं, तो फिर वो बातचीत का विषय बन के रह जाएगा, वो व्यवहार का विषय नहीं बनेगा। और कोई भी ज्ञान जब तक आपके व्यवहार को परिमार्जित और परिवर्तित नहीं करता, तब तक वो ज्ञान महज एक बोझ है। जिसको कई बार कई संतों ने कहा भी है कि जैसे गधे के ऊपर चारों वेद लाद देने के बाद भी वो गधा ज्ञानी नहीं हो सकता, ऐसे ही ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान को सिर्फ आपने ढो रखा है, ढो रहे हैं, क्योंकि वो परंपरा से चली आ रही है, सदशास्त्रों का ज्ञान है, और उसका कोई आपके जीवन में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म में वो ज्ञान है ही नहीं आपके, तो फिर ऐसे में वो ज्ञान आपके लिए भी बोझ है। बल्कि और तो बात छोड़िए, मैंने तो ये तक देखा है कि कई बार ऐसे लोगों से ज्ञान भी लोगों की अरुचि का कारण बन जाता है जो लोग उस ज्ञान से अपने जीवन को प्रकाशित नहीं कर पाते।
0: बिल्कुल, देखिए अब ये अंतःकरण, उत्तम अंतःकरण के जो संत हैं
1: जी,
0: उनके सानिध्य की बात हुई, तो इसे मैं इसी तरह से देख पा रही हूँ जैसे हम संगीत के जो लोग हैं
1: जी।
0: कहा जाता है कि संगीत कितना भी सीखा जाए लेकिन गुरु के साथ मंच पर बैठकर जब तक उनके साथ न गाया जाए
1: जी,
0: तो वो बात नहीं बनती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये वैसा ही है कि ऐसे उत्तम अंतःकरण के जो महात्मा, उनके साथ जीवन के संगीत को गाया जाए, तभी हम उसको सही तरीके से गा सकेंगे।
1: क्योंकि जीवन का संगीत सुर में उनके जीवन से परिलक्षित होता है।
0: जी जी,
1: मुझे एक प्रसंग याद आ गया, समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी के बीच का है वो, कि एक बार क्या हुआ कि शिवाजी को, छात्रपति शिवाजी को, उनको शिक्षा देने के लिए कि राजा को राज्य कैसे करना चाहिए, समर्थ गुरु रामदास उनके ही राज्य में भिक्षाटन करने आए
0: जी,
1: और भिक्षा मांग रहे हैं। तो उनको बड़ा कोफ्त हुआ कि हमारा गुरु जिसका शिष्य इस राज्य का राजा है, वो जाकर के प्रजा के, वो भी ऐसे अंत्यज लोग जहां उनके पास खुद खाने की किल्लत है, उनसे मांग रहे हैं। तो वो इतने क्रोध में आए, उन्होंने कहा गुरु जी को क्या हुआ? तो उन्होंने क्या किया कि राज्य ही उठा करके अपने गुरुजी को दे दिया,
2: दे दिया।
1: हाँ, कहा कि लीजिए राज्य मैं आपको देता हूँ, ताकि अब आपको मांगने की जरूरत नहीं है इस राज्य में। तो वो समझ गए कि देखो इसका अहंकार जो मैं समझ रहा था वही इसके अंदर है। अब छत्रपति शिवाजी जैसा राजा और गुरु का देखिए प्रेम कैसे, ये जो संतों का संग है, मुक्त पुरुष कैसे शिक्षित करते हैं, दीक्षित करते हैं। तो कहते हैं दे दिया। अब अगले दिन जब वो समझ गए, बीमारी जब गुरु को पकड़ में आ गई, तो गुरु उस बीमारी के इलाज के लिए और अब उनके अब सामने राज्य के सामने ही जिसे वो देख सके वहां वो भिक्षा मांगने गए। और उन्होंने अपने परिचारकों को लगा दिया कि आप पता करो ये कहां जा रहे हैं, अब तो राज्य इनको मैंने डोनेट कर दिया। तो देखते हैं भिक्षा मांगते हुए तो फिर अब उनसे रहा नहीं गया और वो गए, उन्होंने कहा कि आपको मैंने राज्य ही पूरा दान दे दिया, अब इस पूरे राज्य के आप राजा हैं, तो ऐसे में आप भिक्षाटन कर रहे हैं, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। तो वो हंसने लगे। तो वो कहते हैं कि जब तुमने मुझे राज्य दे दिया तो मैं अपने राज्य में क्या करूं, इसको नियंत्रित करने वाले तुम कौन होते हो तुम कौन होते हो। तो वो कहते हैं कि अगर राजा भिक्षाटन करेगा तो फिर राज्य की प्रजा का क्या होगा, राजकोष का क्या होगा, और जो पड़ोस के जो अन्य राज्य हैं उनसे सुरक्षा कैसे होगी। तो वो हंसते हुए कहे कि ये दायित्व मैं तुम्हें देता हूँ, ये तुम करो। तो उस समय वो उनके आंखों में आंसू आ गया, उन्होंने कहा कि राज्य ये तुम्हारा नहीं है, तुम इसके ट्रस्टी हो, ये दायित्व है इन लोगों की।

0: रक्षा का, इन लोगों के भरण पोषण का। राजा का पद इतना निश्चिंत पद नहीं है। आप एक परिवार का दायित्व तो अपने ऊपर लेते हैं तो आपको अपने जीवन की परवाह नहीं होती।
1: जी, जी।
0: तो जहां बहुत सारे परिवार की खुशी और दुख का दुख कारण आपको बनना है, वहां कितना बड़ा दायित्व तो आपके ऊपर है कि आप वहां लापरवाह हो सकते हैं। वहां तो और आपको फिक्रमंद होने की आवश्यकता है और सजग होने की जरूरत है। तो इसलिए महात्माओं का संग बहुत आवश्यक है। महात्मा उसका यथार्थ तत्व दर्शन कराते हैं।
1: जी अच्छा, एक बात मेरे मन में है कि ये जो शाश्वत शांति की स्थिति होती है मनुष्य के जीवन में, ये किस तरह से प्रतिष्ठित होती है?
0: जी, ये कहते हैं राम जी कि अतः महात्मन जन्म मरण आदि दुखों से रहित, देह आदि उपाधियों से शून्य तथा भ्रांति रहित वह महान विश्रांतिदायक परम पद कौन सा है जहां पहुंचने से शोक का सर्वथा अभाव हो जाता है। यानी शोक का सर्वथा अभाव शाश्वत शांति प्रदान करता है। राम जी कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि को इस प्रकार मतलब बना ली है कि वो शाश्वत शांति, ऐसा विचार करके हमने सबको त्याग दिया और चिरकाल तक बनी रहने वाली शांति को आज अपने चित्त पर शासन करने के लिए सुदृढ़ अधिकार मुद्रा समर्पित कर दी। तो राम जी कहते हैं कि मेरे चित्त ने संसार के सत्य का ऐसा दर्शन किया कि वो सत्य जान लेने के बाद, जैसे राजा की मुद्रा लग जाने के बाद
1: जी, जी।
0: वो राजाज्ञा हो जाती है। तो ऐसे कहते हैं कि चिरकाल तक बनी रहने वाली शांति को आज से अपने चित्त पर शासन करने के लिए अधिकार मुद्रा समर्पित कर दी है। तो राम जी ने कहा कि वो चीज मैंने समर्पित कर दी है। और इसके लिए कहते हैं कि भोग मेघमाला के बीच में चमकती हुई बिजली के समान चंचल है। राम जी का देखिए उपमा देखिए, वो कहते हैं कि जैसे मेघमाला में चमकती हुई बिजली है, ऐसे ही संसार के जो समस्त भोग हैं वो उस बिजली के समान हैं। और कहते हैं युवा अवस्था के जो मनोरंजन हैं वो जल के वेग के समान चपल हैं। यानी जैसे जल का वेग चपल है, ऐसे ही युवा अवस्था के जो मनोरंजन हैं वो चपल हैं। ऐसा विचार करके मैंने अपने चित्त को शाश्वत शांति के लिए उस पर अधिकार मुद्रा लगा दी है जिससे मैं शाश्वत शांति की प्राप्ति कर सकूं। तो ये दृष्टि है, जब तक ये दृष्टि नहीं आएगी तब तक जो है ये चिरकाल तक बनी रहने वाली शांति नहीं आएगी। और जो शोक से मुक्त अवस्था है जो चिरकाल तक आपको मुक्ति प्रदान करे, वो स्थिति भी हम आसानी से अर्जित नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम इस दृष्टिकोण के साथ दृश्य को न देखने लगे।
1: अच्छा, भगवान श्री राम की दृष्टि में जो ब्रह्मा जी द्वारा रचित ये जगत है वो कैसा है?
0: जगत को हम लोग कहते हैं कि जगत में एक प्रकार का अनुशासन है। पदार्थिक जगत जो है वो अनुशासन के साथ है। सूर्य का उगना डूबना, धरती का अपने अक्ष पर घूमना। तो राम जी कहते हैं कि प्रभो जो मैंने देखा है इस ब्रह्मा जी के सृष्टि को, ये अव्यवस्थित जगत का आदि अंत कैसे समझ सकूं मैं, ऐसा मुझे ज्ञान दीजिए। क्योंकि ये जो अव्यवस्थित उनको दिखाई दे रही है, ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है ये अव्यवस्थित है। यहाँ कुछ भी व्यवस्थित नहीं। अगर व्यवस्थित होता तो आज देखिए मनुष्य अपने मनोकामना को पूरा करने के लिए पूरी तन्मयता से जीवन भर लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी न उसकी तन्मयता कभी समाप्त हो रही है न उसकी कामना कभी पूरी हो रही है। इसका मतलब एक प्रकार की अव्यवस्था का वो शिकार हो रहा है। तो राम जी कहते हैं कि ये सृष्टि अव्यवस्थित है और इसके पूर्वा पर आदि अंत को मैं समझ सकूं, ऐसा मुझे ज्ञान दीजिए। क्योंकि इस संसार में ग्रहण करने योग्य कोई वस्तु नहीं है, सब त्याज्य ही मुझे दिखाई देता है। तो वो तत्व ज्ञान का उपदेश इसलिए चाह रहे हैं कि वो इस संसार के सत्य को जानने के बाद इससे मुक्त रह करके जीवन मुक्त की तरह विचरण कर सके।
1: चूंकि समय बहुत कम रह गया है तो मैं चाहती हूँ कि बहुत संक्षेप में आप दो मेरे प्रश्न है उनका आप उत्तर दे दें।
0: जी,
1: कि दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल का विनाश कैसे होता है, क्या बताया इस ग्रंथ में, और मन की सत्ता किस रूप में है?
0: आपने दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए। तो मैं कहूंगा कि राम जी कहते हैं कि जो जीव है सामान्य तौर पर मनुष्य, वो दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल की इच्छा के लिए कर्म करता है। वो आप देखें तो हम लोग कर्म करते ही हैं कर्म फल के लिए। राम जी कहते हैं कि कर्म फल की इच्छा से किया जाने वाला कर्म हमेशा बंधनकारी होगा या अज्ञानी का कर्म है ये, जो उसके चित्त को बांधेगा, मन को बांध देगा। तो वो कहते हैं निष्काम भाव से अगर कर्म करना आप जानते हैं, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने पूरी गीता कही अर्जुन से, तो उस निष्काम भाव के साथ कर्म करके आप कर्म फल के आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं और वो दृष्ट अदृष्ट कर्म फल का जो आसक्ति या अनासक्ति है उस दोनों से आप बाहर आ सकते हैं।
1: जी।
0: और जो आपने कहा कि मन की सत्ता किस रूप में है, तो राम जी कहते हैं कि ये जो मन है ये तीनों काल में मन की जो मनन शालिनी सत्ता है, मनन शालिनी का अर्थ होता है विषय चिंतन रूप को अस्तित्व करने वाली सत्ता, यानी विषयों का चिंतन करके उसको अस्तित्व प्रदान करने वाली या उस अस्तित्व से अपने अस्तित्व को सिद्ध करने वाली मन की सत्ता। मन कभी भी देखिए, मन का आधार आप देखें तो स्वयं कोई आधार नहीं है, वो किसी आधार के आधार पर टिका है। इसीलिए हमारे जितने भी संबंध हैं वो परस्पर आधारित हैं। कोई संबंध अकेले नहीं होता। माता पिता, पिता पुत्र, माता पुत्र, ऐसे देखें तो सारे संबंध ये द्वंद्वात्मक हैं।
1: जी जी।
0: जो भगवान कहते हैं कि द्वंद्व समास में हूं, तो वो जानते हैं कि ये बिना दो की सत्ता के ये मन खड़ा नहीं होगा। तो ये मन की जो मननशील प्रकृति है यही इसकी सत्ता है। अगर इस द्वैत को मिटा दिया जाए तो मन ही शून्य हो जाएगा। मन का जो मननशील या मनन शालिनी जो शक्ति सत्ता है उससे मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए आचार्य शंकर ने कहा कि जो भारतीय भारत का जो ज्ञान परंपरा का जो मूल धरोहर है वो अद्वैत है। जहां पर द्वैत नहीं है यानी मन के अमन होने की अवस्था, माने इसलिए इसी इस ग्रंथ में भी कहा गया है कि मन से मनन करके अमन की स्थिति में आओ। तो मन से ऐसा मनन करें कि इसके मननशील सत्ता का साक्षात्कार हो जाए, ताकि इस साक्षात्कार के बाद आप मन से मुक्त हो सके या मन को शांत कर सके। मन से मुक्त होने का अर्थ ये कदापि नहीं हुआ कि मन की सत्ता मिट जाएगी, उसका अर्थ ये हुआ शांत होना। क्योंकि जब मन मननशील होता है तो वो विषमता के नाते सुख और दुख के चक्र में फंस जाता है और उसी लूप में घूमता रहता है।
1: जी जी। तो शशिकांत जी, बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज की। आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की श्री राम द्वारा तत्व ज्ञान उपदेश हेतु प्रार्थना विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश पाथम का, और आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
4: भारत विभूति कार्यक्रम में आज सुनिए अमन के सिपाहियों की दास्तान। लेकिन पहले स्वीकार कीजिए मनीषा
5: और दानिश का
4: नमस्कार।
5: भारत की सांस्कृतिक परंपरा और यहाँ के समाज के ताने बाने को समझने के लिए हमें वर्षों पुरानी रस्मों और जीवन को समझना होगा।
4: भारत की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि इसमें कई तरह की सुख संपदा भरी पड़ी है। हजारों साल पहले सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर हमारा देश विदेशी आक्रांताओं की पहली पसंद था।
5: यही कारण है कि शक, यवन, हूण, मंगोल आदि विदेशी आक्रमणकारी अपनी खाली झोली भरने के लिए भारत की ओर कूच करते थे। रेगिस्तान के बंजर इलाकों या साल भर बर्फ से ढके उत्तरी क्षेत्र के दुर्दांत सिपाही हमारे देश में लूटकर अपना जीवन यापन करते थे।
4: इनका रास्ता था हिमालय की घाटियों और दर्रों को पार कर पंजाब सिंध में प्रवेश, या पश्चिमी भारत के रेगिस्तानों के रास्ते भारत का पश्चिमी समुद्र क्षेत्र भी भारत पहुंचने का एक विकल्प था, विशेषकर समुद्री दस्युओं के लिए।
5: इसी समुद्री रास्ते से पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और अंग्रेज भी भारत आए और यहाँ से व्यापार के बहाने जमीन, जंगल और खदानों पर कब्जा करने लगे। भारत की प्राकृतिक संपदा का दोहन कर अपना घर भरने लगे।
4: पर इन सब के बावजूद ये तमाम नस्ल के लोग धीरे धीरे भारत में घुलने मिलने लगे। यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं, संगीत, पुरातत्व, स्थापत्य कला इनके लिए विस्मय का कारण और खोज का कारण बनी।
5: इसके ठीक विपरीत पूर्व के देश और सभ्यताएं भारत की सांस्कृतिक प्रतिछाया सी बन गईं। संस्कृत और बौद्ध ग्रंथों ने उनके जीवन को भारतीयता से रंग दिया। वे भारत से धन संपदा नहीं, बौद्धिक संपदा आयात कर रहे थे, उसे आत्मसात कर रहे थे।
4: रामायण की विपुल रंजक छवियों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और उसके मानवीय मूल्यों को आत्मसात किया। बौद्ध धर्म का अनुशासन, साधना और तप उनके राष्ट्रीय मूल्य बन गए और वे कृतज्ञ भाव से भारत की ओर देखने लगे।

0: मुगलों के आक्रमण के साथ फारसी संस्कृति भी आई। दरबारों का कामकाज, शाही फरमान सब फारसी भाषा और लिपि में दर्ज होने लगे। फारस याने आज का ईरान भी संगीत की समृद्ध परंपरा से भरा हुआ है।
1: श्रोताओं, संगीत के सात सुरों की सरगम उनके यहाँ भी उतनी ही मान्य है जितनी हमारे यहाँ। उनके संगीत में ओम तोम की लगावट और तराना की दिर्तुम दिर्दिर्तुम की तेज लय में डूबना सीधा खुदा की इबादत में डूबने जैसा है।
0: भारत के संगीत भजन, ध्रुपद, पद गायन से प्रभावित हो सूफी संतों ने अपने को उसमें एकाकार कर दिया।
1: ये धुएं की बलखाती वलयों के साथ स्वरों का उत्तेजक लय प्रधान संगीत उस्तादों और संतों का प्राण आधार बन गया। साधारण आम जन भी इससे जुड़ने लगा। दिन भर की थकान को सूफी संतों की वाणी ने अल्हाद और खुशियों से भर दिया।
0: भाईचारे का संदेश जन जन तक फैलाने वाले सूफी संतों में हजरत दाता गंज बख्श, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, शाह आलम, हजरत बहाउद्दीन जकारिया और शाह शम्स मशहूर हैं।
1: इन संतों ने अपनी सरल भाषा में दिल को छू लेने वाली कविताएं लिखी, उनकी धुनें बनाई और जन जन में इसे लोकप्रिय बनाया। गांव गांव की चौपालें इन तरानों से गूंजने लगी।
0: बाबा फरीद ने लिखा, हे फरीद, धूल मिट्टी की निंदा न कर, धूल के समान कोई नहीं। जब हम जीवित होते हैं तो ये पैरों के नीचे होती है और जब हम मरते हैं तो ये हमारे ऊपर होती है।
1: जोते मारण मुखियां उना न मारो गुम, अपने घर जाइए पैर तिना दे चुम। यानी हम सहनशील हों, जो तुम्हें मुक्का मारता है उसे मुक्का मत मारो, उसे क्षमा कर उसके पैरों को चूम लो।
0: मुल्तानी काफी में बाबा फरीद के दोहे गांव गांव गाए जाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके चार शब्द और 112 श्लोक शामिल किए गए हैं, जो गुरु अर्जुन देव जी ने खोज निकाले थे।
1: सूफी कवि वारिस शाह ने अपने हीर के माध्यम से प्रेम और करुणा का संसार रचा। वहीं बुल्ले शाह ने मानव मात्र को एक होने का संदेश दिया। चल बुलिया चल उत्थे चलिए, जिथे सारे अन्हे, ना कोई साड़ी जात पछाने, ना कोई सानू मन्ने।
0: संत बुल्ले शाह एक ऐसे संसार की कल्पना करते हैं, आंखों से भेदभाव न दिखाई पड़े, इंसानियत और बराबरी सबसे बड़ी पूंजी है। ऐसी जगह चलकर रहो जहां न कोई जाति पहचाने न कोई उसको माने।
1: लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर आज तक उत्तर भारत के अनेक सूफी संतों ने प्रेम की वाणी का संचार किया, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और सिंध के बाशिंदों के बीच आदर पूर्वक स्वीकार की गई।
0: 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत के पूर्वी हिस्से यानी अविभाजित बंगाल में रहस्यमय सूफीवाद विकसित हो रहा था, जो बाउल गान के नाम से प्रसिद्ध है।
1: ये एक ब्राह्मणवाद, शैववाद और बौद्ध सहजिया संप्रदाय के सहयोग से एक मिश्रित संप्रदाय विकसित हुआ, जो नाथ संप्रदाय कहलाया। इस्लाम और वैष्णव संप्रदाय में परिवर्तन के बावजूद पुराने संस्कारों को छोड़ना संभव नहीं था, सो उन्होंने धर्म पालन जारी रखा। हिंदू गुरु या मुस्लिम पीर के कोई भी शिष्य इसमें हो सकते हैं।
0: बाउल का समानार्थी शब्द है व्याकुल, यानी अपने इष्ट के प्रेम में व्याकुल, तंद्रा में रहना। यह सूफी के हाल के जैसा ही है। बाउलों के दो वर्ग हैं, सन्यासी बाउल जो पारिवारिक जीवन त्याग, भिक्षा पर निर्भर रहते हैं। दूसरे हैं पारिवारिक बाउल जो गांव बाहर अपना अखाड़ा बना परिवार के साथ रहते हैं।
1: श्रोताओं, बाउल संगीत दिव्य प्रेम का गुणगान करता है। इकतारा इनका वाद्य यंत्र है। सभी धर्मों में मनुष्य धर्म सबसे बड़ा है और बाउल संगीत इसी की व्याख्या करता है।
0: लालन फकीर 1774 में जन्मे सबसे बड़े सूफी बाउल माने जाते हैं। ये आशु कवि थे इनकी रचनाएं 19वीं सदी के प्रारंभ तक मुखाग्र रूप से एक से दूसरे गायक तक पहुंचती रहीं। पूर्व और पश्चिमी बंगाल की सांगीतिक संस्कृति पर बाउल गीतों का बहुत प्रभाव है।
1: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर लालन शाह को अपना गुरु जैसा मानते थे। उनकी अनेक रचनाएं बाउल संगीत और उसके रहस्यमय दर्शन से प्रेरित हैं।
0: लालन शाह बंगला संस्कृति के सबसे बड़े संवाहक कवि हैं। उनके 5000 के लगभग गीत चलन में हैं, पर शोधकर्ता मानते हैं कि इनमें लगभग 1000 लालन शाह रचित ही हैं। लालन क्रांतिकारी सूफी कवि हैं।
1: वो कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि लालन कौन जाति के हैं। लालन पूछता है कि जाति का क्या रूप होता है, इन आंखों ने देखा तो नहीं, कोई माला कोई तस्वीर, तो जात अलग हो जाती है, अंत समय कौन सा चिन्ह रह जाता है।
0: एक गीत में लालन कहते हैं कि मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, जो करना है शीघ्र करो। अरे अबोध मन, तू अपने ही लोगों को नहीं पहचानता, अरे दोबारा मनुष्य जन्म नहीं होगा। बाउल सूफी संप्रदाय केवल मानव धर्म को मानता है, जाति पाति की अवधारणा से दूर वे अपने मन के भीतर छिपे मोनेर मानुष की खोज करते हैं। इन गीतों में देह तत्व, परम आत्मा से मिलन और बिचोह का संदेश तो है ही, साथ ही सर्वधर्म संभाव का आग्रह भी स्पष्ट है।

0: भारत की चारों प्रमुख भाषाओं में अनेक संतों ने भक्ति रचनाएं लिखी। तमिल में 12 अलवार संतों ने वैष्णव धर्म पर 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। संस्कृत रामायण के लोक भाषाओं में अनुवाद हुए।
1: केरल में आदि शंकराचार्य ने अनेक सुंदर काव्य रचनाएं संस्कृत में रची, जो मंदिरों में संगीत रूप में गाई जाने लगी। संत त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुथु स्वामी दीक्षितर ने कर्नाटक संगीत पर आधारित अनेक भक्ति रचनाएं तैयार की, जो आज भी पूरे कर्नाटक संगीत का आधार संगीत मानी जाती हैं।
0: 20 अगस्त 1856 को केरल के चैंपा झंथी में एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जो बाद में चलकर एक बड़े दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए।
1: उनका नाम है नारायण गुरु। उन्होंने केरल के जाति प्रधान समाज में व्याप्त अन्यायों के विरुद्ध आवाज उठाई, एक सुधार आंदोलन आरंभ किया जिसका सूत्र था सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर।
0: संस्कृत और वेदांत के अध्ययन के बाद उन्होंने योग और ध्यान साधना की। 1904 में शिवगिरी में उन्होंने एक स्कूल खोला जहां जाति धर्म आदि के परे निशुल्क शिक्षण देना शुरू किया। जातिगत भेदभाव के खिलाफ उन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया।
1: अपनी केरल यात्रा में गांधी जी भी उनसे मिले थे और उनके ज्ञान और विचारों से प्रभावित हुए। नारायण गुरु ने केरल और तमिलनाडु में 45 मंदिरों की स्थापना की।
0: इन अनोखे मंदिरों में कोई प्रतिमा नहीं, इनमें सत्य, नैतिकता, करुणा, प्रेम शब्दों से उत्कीर्ण एक शिलापत्र, एक शाकाहारी शिव, एक दर्पण और एक इटालियन मूर्ति शामिल थी।
1: श्रोताओं, सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने कृषि मजदूरों को संगठित किया, नारियल कारखानों के गरीब मजदूरों को उचित पारिश्रमिक की पैरवी की और समाज को संगठित किया।
0: नारायण गुरु ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें उन्होंने वेदांत की सरल व्याख्या की। नैयर नदी के किनारे उन्होंने अरू विप्पुरम में विशाल मंदिर बनवाया जिसमें बिना जातिगत भेदभाव के कोई भी पूजा कर सकता है। स्वर्ण समाज ने उसका विरोध किया तो नारायण गुरु ने कहा, ईश्वर ना तो पुजारी है ना किसान, वह सब में है। उन्होंने मनुष्य को स्वाभिमान से जीना सिखाया, बगैर जातिगत भेदभाव के, यही उनका गुरु मंत्र था।
1: आज हजारों सूफी गीत, बाउल गीत और नारायण गुरु की रचनाएं उपलब्ध हैं, पर ये केवल पढ़ने की नहीं, देश के जन जन में बसी प्राणवायु है, उसका जीवन संगीत है। भारत इसी में जीता है, इसी में सांस लेता है।
0: अमन के सिपाहियों की ये दास्तां अब संपन्न हुई। इसे आपके लिए लिखा था ईला शंकर गोहा ने। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखन
2: ईला शंकर गुहा।
1: श्रोताओं, इसी के साथ भारत विभूति कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अनुमति दीजिए मनीषा
0: और दानिश को।
1: नमस्कार।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष।

जन गर्जे, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: ये गायन महोत्सव 26 जुलाई तक चलेगा। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए भारत भवन के अंतरंग सभागार में। यह गायन नीना श्रीवास्तव का।
1: मैं सबसे पहले शुरू करूंगी मेघ मलार की एक द्रुत ख्याल की बंदिश से, जिसके बोल हैं गरज घुमड़ घन छायो बदरवा।

भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ifrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात। वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: वीरता, साहस और शौर्य का प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1830 में बनारस में हुआ था। उन्होंने बचपन में लिखाई पढ़ाई के साथ साथ हथियार चलाना भी सीख लिया था। 14 साल की उम्र में उनका विवाह महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बन गईं। गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने दामोदर राव को दत्तक पुत्र बना लिया। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात डलहौजी की हड़प नीति के चलते अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने अधीन कर लिया। 1857 में जैसे ही मेरठ के सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत की, रानी ने भी झांसी की बागडोर अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। वे क्रांतिकारी सिपाहियों की मदद करने लगी। उन्होंने काफी समय तक झांसी किले की रक्षा की, लेकिन 1858 में अंग्रेजों ने एक बार फिर झांसी पर हमला किया। रानी की 14,000 सैनिकों की फौज ने 2 हफ्तों तक अंग्रेजी फौज का मुकाबला किया और अंततः रानी को झांसी छोड़कर कालपी जाना पड़ा। अंग्रेजों ने रानी को पकड़वाने वाले को 20,000 रूपये का इनाम देने की घोषणा की। झांसी की रानी को मर्दानी की संज्ञा सबसे पहले अंग्रेजों ने ही दी थी। कालपी में रानी ने तात्या टोपे के साथ मिलकर भावी रणनीति बनाई और ग्वालियर को अंग्रेजों से छीन लिया। अंग्रेजों ने ग्वालियर वापस पाने के लिए फिर उनसे मुकाबला किया। 17 जून 1858 को युद्ध में लड़ते लड़ते रानी वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई हमेशा के लिए वीरता, साहस और शौर्य का प्रतीक बन गईं।

0: घंटे भर से प्याज और मिर्ची लगा दी है, बता है? ना रोटी का पता है ना दाल का पता है।
1: और कुछ बोलो तो बुरा मान जाते हैं।
0: अरे गजबी है काका, अरे दाल तो भिजवा दो इधर।
2: अरे आ रही है भाई, लड़का ला तो रहा है। अरे दाल लगा दे जल्दी से इधर।
3: और ये कहाँ का गाना लगा दिया रेडियो पर?
2: क्यों, क्या बुराई है इसमें?
1: अरे बुराई की बात नहीं है, अरे सुनवाओ तो कचू चटपटा सुनवाओ।
3: वो नहीं था
1: ऐसे कचू भी करते हैं
3: अब तो मजा
2: है। अरे चटपटे बटपटे ही गाने सुनते रहोगे या कभी उनके भी गाने सुन लिया करो जो देश के लिए शहीद हुए हैं। ये कोई चलता हुआ गाना नहीं है, 150 बरस से बुंदेलखंड के गांव गांव में गाया जाता रहा है ये लोकगीत, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी।
0: झांसी वाली रानी? काका सुना तो बहुत कुछ है इसके बारे में
1: पर मालूमात कुछ भी नहीं है काका।
2: अरे तो फिर हम किस लिए हैं?

0: मन में ठानी थी।
1: सन 1857 ईस्वी में प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की फौजों को शिकस्त देने के बाद फिरंगी ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते कदमों को रोक पाना असंभव सा हो गया था। बंगाल और बिहार के साथ साथ समूचा अवध उसके खूनी चंगुल में आ चुका था। इधर पूना की पेशवाई को तहस नहस कर कंपनी सारी देशी रियासतों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेने के लिए नित नए मंसूबे गढ़ रही थी। इन्हीं मंसूबों के तहत पूना के बाजीराव पेशवा को अपना सब कुछ छोड़कर दूर कानपुर के पास बिठूर की छोटी सी जागीर पर संतोष करना पड़ा। पेशवा के विश्वस्त सहयोगी मोरोपंत भी उन्हीं के साथ बिठूर चले आए। साथ में थी उनकी इकलौती बेटी मनुबाई, जो आगे चलकर लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। बाजीराव पेशवा निसंतान थे, अतः उन्होंने एक बालक को गोद लिया। नाम था नाना धुंधू पंत, जिन्हें आगे चलकर महान क्रांतिकारी नाना साहब के नाम से जाना गया। और मनुबाई इन्हीं नाना की मुंहबोली बहन थी।
0: हर चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में।
1: नाना साहब और तात्या टोपे के साथ हर तरह के हथियार चलाने में निपुण होने के साथ साथ मनुबाई राजनीतिक दांव पेचों को भी बारीकी से समझती जा रही थी। इन्हीं दिनों झांसी के राजा गंगाधर ने मनुबाई को विवाह का प्रस्ताव भेजा।

0: अब आप इस झांसी की महारानी हैं। दास दासियां, सेवक चाकर सब आपकी सेवा में हाजिर हैं। जिस चीज की इच्छा हो बस इशारा भर कीजिए कि हाजिर।
1: जिस भी चीज की?
0: हाँ, जिस चीज की भी।
1: तो ठीक है, कुछ बहुत अच्छे घोड़े,
0: घोड़े
1: कुछ बंदूकें, कुछ तलवारें, ढाल, बर्चियां, भाले।
0: रानी, ये आप क्या?
1: महाराज, आपने मुझे अपनी रानी का सम्मान दिया है तो मैं उसी के अनुकूल वो सब कुछ तुरंत आरंभ कर देना चाहती हूँ जो एक रानी के नाते मुझे करना चाहिए। मैं यहाँ स्त्रियों को फौजी प्रशिक्षण दूंगी ताकि वक्त आने पर वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकें।
0: ठीक है, जैसी आपकी इच्छा।
1: शाबाश, हम सबकी अब एक अच्छी खासी घुड़सवार टुकड़ी तैयार हो चुकी है, लेकिन मैं इतने पर भी सब्र नहीं करने वाली। मैं चाहती हूँ तुम्हें तोपे चलाने का भी भरपूर मौका दिया जाए। क्यों गुलाम गौस खां?
2: जो हुक्म रानी साहिबा।
3: इसी बीच रानी ने एक बालक को जन्म दिया। झांसी में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन कायम न रह सकी। नवजात राजकुमार असमय राजा रानी को रोता बिलखता छोड़ चले गए। रानी ने जल्द ही अपने दुख पर काबू पा लिया, लेकिन राजा जी ये आघात सहन न कर सके, वे बीमार रहने लगे। रानी ने इन हालात में हिम्मत से काम लिया और शासन के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया।
0: रानी, मेरा विचार है अपने ही वंश का कोई बालक गोद ले लिया जाए।
1: जैसी आपकी इच्छा महाराज, शायद विधाता की भी यही मर्जी है, वरना आपका उत्तराधिकारी यूं आकर भी गोद क्यों सूनी कर जाता।
0: तो जिस बालक को तुम उचित समझो गोद लेने के लिए चुन लो। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो ये रस्म पूरी कर ली जाए।
1: जी अच्छा।
0: मैं झांसी का राजा गंगाधर राव आज विधि और विधान के अनुसार अपने पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में दामोदर राव को अपने दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण करता हूँ और घोषित करता हूँ कि दामोदर राव मेरे बाद इस राजगद्दी के असली वारिस होंगे। दीवान जी।
4: जी महाराज।
0: कंपनी बहादुर को इस बाबत एक खत तुरंत भेजा जाए।
4: जो हुक्म महाराज।
3: गोद लेने की रस्म पूरी होने के कुछ ही दिनों बाद अचानक राजा गंगाधर राव स्वर्ग से धार गए। 18 बरस की कच्ची उम्र में रानी लक्ष्मीबाई पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन संकट की घड़ियों में रानी ने असीम धैर्य और साहस का परिचय दिया। अपने नाबालिग दत्तक पुत्र दामोदर राव को गद्दी पर बिठाकर रानी ने उसकी संरक्षिका के रूप में शासन की बागडोर संभाल ली। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल डलहौजी ने किसी भी राजा के दत्तक पुत्र को वारिस के रूप में मान्यता न देने की एक अजब सी नीति चला रखी थी।
5: रानी साहिबा, हम लॉर्ड साहब डलहौजी का फरमान लेकर आया है। हम आपको बताना मांगता है कि झांसी का राजगद्दी खाली है।
1: खाली कैसे? इस पर महाराज के वारिस दामोदर राव बैठे।
5: लेकिन उनको गद्दी पर बैठने का इख्तियार नहीं है।
1: क्यों नहीं? वो बाकायदा गोद लिए बेटे हैं, दत्तक पुत्र हैं।
5: नो नो नो, हिज एक्सीलेंसी गोद लिया बेटा को कानूनी वारिस नहीं मानता है।
1: उनके मानने न मानने से क्या होता है? हमारे शास्त्रों में विधान है कि दत्तक पुत्र असल पुत्र की जगह होता है।
5: नो, अगर गवर्नर जनरल नहीं मानता है तो नहीं माना जाएगा, दैट्स ऑल। आज और इसी वक्त से झांसी पर आपका हुकूमत खत्म होता है। झांसी स्टेट कंपनी बहादुर की हुकूमत में शामिल होता है।
1: नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।
6: रानी साहिबा, फिरंगी फौजों ने झांसी पर घेरा डाल दिया है और हम इनका मुकाबला करने की हालत में बिल्कुल नहीं है। मेरी विनती है रानी साहिबा, इस वक्त सब्र से काम ले, वरना झांसी बर्बाद हो जाएगी।

0: और जनमानस को भी टटोल रही थी। इस दौरान तात्या टोपे, नाना साहब और अन्य क्रांतिकारियों से उसका निरंतर संपर्क कायम था।
1: मनु?
2: हाँ तात्या, मैंने तो अपनी तरफ से काफी तैयारी कर ली है। देसी पलटन की एक बड़ी टुकड़ी मेरा साथ देने तैयार है, लड़कियों की भी एक बड़ी टुकड़ी तैयार है। इसके अलावा फिरंगियों ने जो हमारी फौज भंग की थी, उसके भी ज्यादातर फौजी हमारे साथ हैं।
1: वाह, बहुत अच्छी तैयारी है। मैं भी अवश्य दिल्ली तक घूम घूम कर सबसे मिलता रहा हूँ। रुपया पैसा भी काफी जमा हो चुका है। सन्यासी और फकीरों के वेश में अपने साथी गाँव गाँव शहर शहर घूमते हुए विद्रोह की अलग जगा रहे हैं। नाना साहब और अजीमुल्ला खां का कई हिंदुस्तानी फौजियों से संपर्क कायम है।
2: दूर दूर तक सबको एकता के सूत्र में बांध रहे हैं।
1: मनु, अहमद शाह की भैरावादी की जोशीली तकरीरों ने मुर्दों में नई जान फूंक डाली है। लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। फिरंगी फौजों के हिंदुस्तानी सैनिक बस उस दिन के इंतजार में हैं कि इशारा पाते ही वो एक साथ फिरंगियों पर मौत बनकर टूट पड़ेंगे।
2: कोई तारीख तय हुई?
1: बात चल रही है मनु, बस पक्की होते ही खबर पहुंचा दूंगा।
2: तो ठीक है। वैसे शाहगढ़ के बखत बली और बानपुर के मर्दन सिंह मेरे संपर्क में हैं। वो लोग बांदा के नवाब को भी साथ लेने की तैयारी कर चुके हैं। अब बस तुम्हारी तरफ से इशारे की देर है। फिरंगी फौजों ने बानपुर फतेह कर लिया है और अब वो झांसी की तरफ बढ़ रही हैं। तात्या टोपे को संदेश भेजा है कि मदद के लिए फौरन आ जाएं। गुलाम गौस खान
3: जी, सरकार,
2: आपकी तोपे तैयार हैं?
3: जी, हर तोप तैयार है। कुछ तोपों की मरम्मत भी पूरी हो चुकी है।
2: ठीक है सुंदर।
4: जी रानी साहिबा।
2: झांसी के आसपास के इलाकों में जहाँ जहाँ घास नजर आए उसे जला डालो, जहाँ जहाँ घने दरख्त हो उन्हें गिरा दो। मैदानी इलाका इतना उजाड़ हो कि फिरंगी फौजों को न चारा नसीब हो न दरख्तों का साया। रसद मिलने के भी सारे ठिकाने खत्म कर डालो। इस काम पर अलग अलग दिशाओं में अपनी टुकड़ियां फौरन लगा दो। मुंद्रा, मुझे दूरबीन दे। सर हीरोज भारी लाव लश्कर के साथ बढ़ा आ रहा है। गुलाम गौस खां, मेरा इशारा मिलते ही अपनी शानदार घन गर्जन तोप को दाग देना।
3: जी सरकार।
2: दागो। आज इसी वक्त से झांसी आजाद है। मैं दामोदर राव के सरपरस्त की हैसियत से झांसी की गद्दी संभालूंगी। ऐलान किया जाए।
5: मलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, राज रानी लक्ष्मीबाई का।

0: ओह, इसका मतलब हमारा किला पूरी तरह फिरंगियों के लिए खुल चुका है।
1: फिरंगी फौजें किसी वक्त किले में दाखिल हो सकती हैं।
0: तो ठीक है, तुम सब लोग सुरंग के रास्ते किले से बाहर निकल जाओ। मैं तोपखाने के बारूद भंडार में जाकर खुद को खत्म कर लूंगी।
2: नहीं, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता।
3: जब इसी तरह मरना है तो आप अकेली क्यों रानी साहिबा? हम सभी मरेंगे।
4: हम भी इसी तरह जान दे देंगे, लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाएंगे।
1: हम सिर्फ कमजोर हुए रानी जी, हारे नहीं है। आपकी छत्र छाया रहे तो हम अभी भी फिरंगियों को खदेड़ सकते हैं। हो सकता है तात्या टोपी हमारी मदद के लिए प्रयत्न कर रहे हो।
0: तो ठीक है, तात्या काल्पी ना आ सके तो क्या हुआ, हम तो काल्पी जा सकते हैं।
2: हाँ।
0: तो चलो काल्पी।
2: रानी लक्ष्मीबाई की।
5: उसी रात मर्दाना भेज में रानी किले की दीवार से हाथी की पीठ पर कूदी, पीठ पर दामोदर राव को बांधा और एक सफेद घोड़े पर सवार होकर काल्पी की ओर चल पड़ी। अंग्रेज लगातार उसका पीछा कर रहे थे, दोनों हाथों से तलवार चलाती, फिरंगियों को मारती काटती रानी लक्ष्मीबाई बिना रुके मीलों दूरी का सफर तय कर काल्पी जा पहुंची। वहां पहुंचते ही रानी के वफादार घोड़े ने दम तोड़ दिया। रानी ने वहां मौजूद तात्या टोपे, नवाब बांदा, बानपुर और शाहगढ़ के बहतबली व मर्दन सिंह से सलाह ली। नाना साहब की ओर से उनके छोटे भाई राव साहब ने रानी का स्वागत किया। रानी ने यहाँ फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व संभाला।
0: बहादुर सिपाहियों, मेरी टुकड़ी का नाम होगा लाल कुर्ती। हीरोज की फौजें किसी भी दम काल्पी पर हमला कर सकती हैं। अपनी फौज में मुझे जाबाज सिपाहियों की जरूरत है। तुम में से जिसे भी मौत का डर हो वो इसी वक्त मेरी फौज से जा सकता है।
6: नहीं, हम मरते दम तक आपकी आज्ञा मानेंगे।
1: हम आपके एक इशारे पर हंसते हंसते सर कटा देंगे।
4: हमारा एक ही नारा है, फिरंगियों से लड़ेंगे,
1: मारेंगे या मर जाएंगे।
0: शाबाश।
7: मनु, खबर मिली है कि हीरोज की फौजें काल्पी की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही हैं।
0: मुझे तो अपनी लाल कुर्ती टुकड़ी पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या राव साहब की सारी पलटन मैदान में फिरंगियों से लोहा ले सकेंगी?
7: क्या बताऊं मनु भाई, नाना साहब की गैर मौजूदगी में राव साहब यहाँ की कमान संभाले बैठे हैं।
0: लेकिन वो खुद तो भांग की तरक भी रहते हैं।
7: हाँ, उनके ज्यादातर फौजी और अफसर भी वैसे ही हैं। इसके अलावा जाने कहां कहां के लुटेरे और डकैत भी इनकी फौज में घुस आए हैं।
0: मैंने उनसे कहा था राव साहब, अपनी फौज को थोड़ा चुस्त दुरुस्त बनाओ।
7: तो क्या जवाब दिया उन्होंने?
0: बस हाँ हूँ कह के टाल गए।
7: वो कुछ नहीं करेंगे, और दोबारा कहोगी तो हो सकता है कि बुरा मान जाएं।
0: पर क्यों?
7: कई बार कोशिश करने के बाद मैंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। बुरा मत मानना, राव साहब को उच्च कुल के होने का घमंड है, लिहाजा मुझ सरीके साधारण हैसियत वाले की बात मानना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं।
0: क्या कह रहे हो तात्या?
7: रही बात तुम्हारी, तो तुम एक स्त्री हो और ऊपर से उम्र में बहुत छोटी।
0: ये क्या बात हुई? ये छोटे और बड़े का फर्क, ये मर्द और औरत का भेदभाव आखिर क्यों?
7: फिरंगी से लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन ये खोखला दम्भ उनका पीछा नहीं छोड़ पाता।
0: कमाल है, नाना साहब में तो ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं।
7: यही तो फर्क है उनमें और नाना साहब में। खैर, जो भी हो, फिरंगियों से जंग तो मिलकर ही करनी है।
0: सही है, भले ही अलग अलग विचार हो, अलग अलग मानसिकताएं हो, लेकिन लक्ष्य तो हमारा एक ही है।
7: बिल्कुल सही।

0: और देखते ही देखते सर ह्यूरोज अपनी फौजों के साथ काल्पी पर टूट पड़ा। जबरदस्त युद्ध हुआ लेकिन काल्पी अंग्रेजों के हाथ आ गया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राव साहब और उनके कुछ साथी वहां से दूर एक सुरक्षित स्थान पर ठहरे।
1: कहिए, आप सबकी क्या राय है? इस वक्त तो हम फिरंगियों से मुकाबला करने की हालत में नहीं है।
2: मुकाबला करने के लिए हमें मजबूत किला चाहिए और वो किला है ग्वालियर।
1: ग्वालियर के सिंधिया महाराज नाबालिग हैं और उनका दीवान फिरंगियों से मिला हुआ है।
2: और फौजी?
1: बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी फौजी हमारा साथ देने को तैयार है। मैं उनसे अरसे से संपर्क में हूँ।
2: तो फिर ठीक है, आप पहले जाकर उन फौजियों को आगाह कीजिए, फिर हम ग्वालियर की तरफ बढ़ेंगे।
1: ठीक है।
0: हवा से बातें करते तात्या टोपे भी आन की मान में ग्वालियर जा पहुंचे और वहां सिंधिया की फौज में विप्लव की चेतना फूंक आए। राव साहब की सेना के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी लाल कुर्ती टुकड़ी के साथ ग्वालियर की ओर कूच किया। सिंधिया के दीवान ने एक टुकड़ी राव साहब की फौज का मुकाबला करने भेजी। हिंदुस्तानी फौजी तो पहले ही फिरंगियों के खिलाफ हथियार उठाने पर आमादा थे। नतीजा यह हुआ कि राव साहब की फौजें ग्वालियर के किले में घुस गईं। नाबालिग सिंधिया को लेकर दीवान आगरा भाग गया।
3: खला खुदा का, मुलुक बादशाह का, हुकुम राव साहब का, महारानी लक्ष्मीबाई की।
4: रानी साहिबा, किले पर तो सिंधिया और फिरंगी का झंडा उतारकर पेशवाई का झंडा फहरा दिया है। सिंधिया महाराज के खजानजी अमर सिंह बाठिया ने तो सारा खजाना सौंप दिया है।
5: अपने सब फौजियों को तनख्वाह बांट दी गई है। राव साहब दरबार बुलाकर पेशवाई का राज तिलक भी करवाने वाले हैं।
4: ऐसी धूम, ऐसी रौनक की पूछिए मत। जगह जगह नाच गाने हो रहे हैं,
5: मिठाइयाँ लुटाई जा रही हैं,
4: भांग बूटी की तो बरसात हो रही है।
2: बस यही एक बात है जो मुझे खटक रही है। राज तिलक हो रहा है, खुशी की बात है, थोड़ी धूमधाम भी हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये भांग बूटी और नाच गाना इस वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं। फिरंगी किसी वक्त भी इस तरफ रुख कर सकते हैं।
6: लेकिन हम क्या कर सकते हैं?
2: जिन्हें जो करना है करते रहें, लेकिन हम तो अपना काम करेंगे। आसपास के पहाड़ी इलाके, घाटियों और मैदानों का जायजा लेंगे।
0: और रानी ने यही किया। तपती दोपहरी और तेज लू के झोंकों में रानी अपने कुछ साथियों के साथ ग्वालियर का भौगोलिक और सामाजिक निरीक्षण करने में जुट गई। और तभी फिरंगी फौजों ने ग्वालियर को घेर लिया। तात्या टोपे अपनी सेना लेकर मुकाबला करने बढ़े, लेकिन फिरंगी फौजों ने उन्हें तितर बितर कर दिया। रानी ने उनमें नई हिम्मत फूंकी और नए सिरे से व्यूह रचना की।
2: तात्या जी, इस समय किले का पूर्वी फाटक सबसे ज्यादा खतरे में है।
1: आप ठीक कहती हैं।
2: तो इस फाटक की रक्षा का भार मुझ पर रहेगा।
7: वो देखो, जनरल स्मिथ ने अपनी फौज के साथ पूर्वी फाटक पर हमला बोल दिया है।
8: और रानी को तो देखो, किस बहादुरी से उसने फिरंगियों को खदेड़ दिया है।
9: देखो, घोड़े पे सवार रानी अपनी तलवार चमकाती फाटक से बाहर निकल आई है।
8: फिरंगियों को गाजर मूली की तरह काट छाट कर फिर फाटक पर जम गई।
7: सुबह से शाम हो गई, लेकिन रानी ने अपने घोड़े से उतरने का नाम तक नहीं लिया।
8: बिजली की तरह हर मोर्चे को संभाल रही है।
9: थक हार कर जनरल स्मिथ ने पूर्वी फाटक का रुख ही छोड़ दिया।
5: रानी जी, हमारी तोपें ठंडी हो गई हैं।
2: हमारी सारी फौज तितर बितर हो गई है। हम चारों ओर से घिर चुके हैं।
5: हम लोग भी गिनती के ही रह गए हैं, 15-20 फौजी ही बचे हैं।
2: हम फिरंगी फौजों को चीरते हुए दूसरी तरफ मौजूद अपने साथियों से मिल जाएंगे। घोड़ों को एड़ लगाओ। जय भवानी,
10: जय भवानी।
5: रानी जी, फिरंगी पीछे ही आ रहे हैं।
2: मुड़कर मत देखो, मारते काटते आगे बढ़ते चलो।
1: रानी जी, सामने नाला है, उसे पार कर लें। उसे पार कर लें तो फिरंगी हमें छू भी नहीं सकेंगे।
2: पर ये क्या, मेरा घोड़ा तो नाला पार करने के बजाय आसपास चक्कर काट रहा है। ओह, ये नया घोड़ा है, तभी अड़ रहा है।
1: रानी जी, जैसे भी वो नाला कूद जाइए, फिरंगी पास आते जा रहे हैं।
2: मैं कोशिश करती हूँ रामचंद। उफ, लगता है ये घोड़ा साथ नहीं देगा।
1: रानी जी,
2: तुम मेरी चिंता छोड़ो रामचंद्र, तुम्हारे साथ दामोदर राव है, उसे लेकर फौरन निकल जाओ। हाँ, अपनी तलवार से मुझे
1: नहीं, ये आप क्या कह रही हैं रानी जी?
2: फिरंगी मेरी देह को छुए, इससे अच्छा है तुम ही मेरे देह का अंत कर दो। अरे मैं कहती हूँ
11: लुक रानी इज देयर, कम ऑन बॉयज।
1: रानी जी संभालिए, वो फिरंगी सर पर वार कर दिया। हाय आधा माता कट गया, एक आग बाहर निकल आई। रानी जी दुष्ट फिरंगी ने छाती पर वार कर दिया।
12: जय भवानी।
1: रानी जी ओ सिर और छाती से खून के फव्वारे छूट रहे हैं। वार करने वाले दोनों फिरंगियों को मौत के घाट उतार दिया लगता है। रानी जी बेहोश हो रही है। मैं आता हूँ रानी जी, मैं आ रहा हूँ रानी जी।
2: रामचंद्र
1: मैं आगे रानी जी,
2: अब मैं नहीं बचूंगी।
1: ऐसा ना कहिए रानी जी।
2: देखो फिरंगी मेरी देह को हाथ ना लगा सके। तुम
1: रानी जी आके खोलो। आप निश्चिंत रहे रानी जी, मैं आपको बाबा की कुटिया में ले चलता हूँ रानी। गंगा दास बाबा, फिरंगी वहां तक नहीं पहुंच सकते, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ बाबा।
13: कौन? अरे
1: ये रानी जी है बाबा। बाबा झांसी की रानी लक्ष्मी बाई।
13: इन्हें भीतर ले चलो बेटा। हाँ हाँ यहाँ लेटा दो। हाँ बेटी मुंह खोलो। हाँ पी लो बेटा, गंगा जल है ये, पी लो।
1: रानी जी
13: आज भवानी से जा मिली है।

आनन फानन में बाबा ने अपनी कुटिया तोड़ डाली। एक तपस्वी की कुटिया की पवित्र लकड़ियों की चिता बनी। रानी की मृत देह को देखते ही देखते आग की लपटों ने भस्म में परिवर्तित कर दिया।

भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन, वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे गायन डॉक्टर ऋषि मिश्र का। ये प्रस्तुति उन्होंने दी भारत भवन में आयोजित गायन पर्व में।
1: साथ में तबले पर पंडित अरविंद कुमार आजाद जी हैं, तो ये सब सौभाग्य की बात है कि ऐसे वरिष्ठ कलाकार साथ में मंच में बैठकर हमें गवाते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। और सारंगी में जनाब आबिद हुसैन साहब किसी शहर के हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और साथ में रचना शर्मा जी हैं संवादिनी पे, तो बस सबका साथ लेके तानपुरे पर डॉक्टर निहारिका मिश्रा और मौसम जायसवाल जी हैं, सबका साथ लेके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ। चूंकि मौसम बाहर ऐसा है कि राग मेघ मल्हारी गाने का मन किया, तो मेघ मल्हार से कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

बंदिश का कहन बहुत, ये पूरी पोएट्री होती है, इसमें बहुत बड़ा एक भेद छुपा रहता है कि श्याम घन आयो, घना हुआ बादल आ गया है, जियरा डर पायो, उसको घेरता देख जियरा में मन में डर आ गया।